FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 3 तारीख, तदनुसार 25 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 और 36 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टर पंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है।

0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन वार

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आपकी सभी शक्तियां आपके भीतर ही है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए झरोखा, हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही पलों में पेश किया जाएगा श्री रामचरितमानस सुबह 6:35 पर। संगीत सरिता का प्रसारण समय रहेगा 6:45।

सुबह 7 बजे प्रोग्राम होगा भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम सुनिए 7:30 पर। समाचार प्रभात का समय होगा 8 बजे। 8:15 पर सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम त्रिवेणी। चित्रलोक कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 8:30 पर। पेश किया जाएगा प्रोग्राम आज का अखबार 9:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम हिंदी में समाचार रिले करेंगे सुबह 10 बजे, 12 बजे, 2:15, शाम 5 बजे, 6 बजे, 8:45 और रात 11 बजे। सुबह 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सफर सुरीला सा।

11 बजे कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आज बात की जाएगी प्रोफेसर अमित गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ से, विषय रहेगा आई डोनेशन। 11:30 पर हम लेकर आएंगे पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुने हैं मित्रां दे। दोपहर 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारे केंद्र से हिंदी में समाचारों का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 1:05 और शाम 6:10 और जालंधर केंद्र से पंजाबी में समाचार हम रिले करेंगे 1:10 और शाम 6:20 पर।

दोपहर 1:15 पर सुनिए फिल्म संगीत, 1:30 पर सुरीला सफर और 2 बजे होगा प्रोग्राम त्रिवेणी। 2:30 पर पेश करेंगे सदाबहार नगमे कार्यक्रम। 3 बजे होगा सखी सहेली। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए प्रोग्राम सेलुलाइट के सितारे। शाम 5:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत। स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 5:30।

शबद श्रवण कीजिएगा प्रोग्राम अमृत बाणी के तहत 6:30 पर। जयमाला प्रोग्राम सुनिए शाम 7:45 के प्रादेशिक मुख्य समाचारों के बाद आपको सुनवाएंगे चुनिंदा पंजाबी गीत। रात 8 बजे प्रोग्राम होगा हवा महल। 8:15 पर प्रोग्राम होगा चित्रलोक।

ये रात 9 बजे 9:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम आज के फनकार। रात 10 बजे का समय रहेगा छाया गीत कार्यक्रम का और रात 10:30 पर प्रादेशिक मुख्य समाचारों के बाद पंजाबी गीतों का लुत्फ उठाइए प्रोग्राम सुरसांझ के तहत। ये था झरोखा, हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में सुनिएगा श्री रामचरितमानस।

लंका के लिए कूच करने को तत्पर श्री राम की सेना वानर राज सुग्रीव का आदेश पाते ही गर्जन तर्जन करती प्रस्थान करती है। विशाल रूप धारण कर वानर और रीच वृक्षों तथा पर्वतों का शस्त्र लेकर थल और आकाश मार्ग से चल पड़ते हैं। दिशाएं भयंकर नाद से गूंजने लगती हैं। पर्वत चंचल हो जाते हैं और समुद्र मानो खौलने लगते हैं। श्री राम की सेना सागर पार कर लंका में उतर गई है, ये समाचार सुनकर मंदोदरी आतंकित हो जाती है। वो रावण से विनती करती है कि वो श्री हरि का विरोध छोड़ दें, क्योंकि सीता को लौटाए बिना शिव और ब्रह्मा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 291।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार। अभी तक हमने श्री कालीनाथ मिश्रा जी से कई प्रचलित ताल उसके बारे में जानकारी हासिल की है, उन तालों को सुना है। गाने बजाने में कुछ अप्रचलित ताल भी हैं, तो मिश्रा जी क्या हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे अप्रचलित ताल हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं और गाने के साथ वाद्य के साथ बजाए जाते हैं, सोलो भी बजाए जाते हैं?
2: दास बाबू, आज मैंने सोचा कि क्यों न पंचम सवारी पेश किया जाए।
1: क्या बात है।
2: कुछ ताल ऐसे हैं जो हम गाते बजाते हैं और कुछ ताल ऐसे हैं जो कभी एग्जाम में बैठ गए, जैसे शिखर ताल, लक्ष्मी ताल
1: जी,
2: अष्टमंगल। लेकिन जो झप ताल, रूपक ताल, तीन ताल, एक ताल, 14 मात्रा, धम्मार, ये सब हम मंच पे श्रोताओं के सामने हम प्रस्तुति देते रहे हैं। और पस्तो ताल, जैसे 15 मात्रे का दो ताल है, एक है गज्झंपा ताल।
1: अच्छा।
2: हाँ जी। धा धिन न कतक, धा धिन न कतक, तिन न कतक, ते टेका तगा दिगन। लेकिन इससे हम बातचीत कब करते हैं, कभी एग्जाम हुआ किसी डांसर के साथ या किसी तबला वाले का एग्जाम हुआ। लेकिन ताल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हम भी आनंद उठाएं, सुनने वाला भी खाली गिनती न गिनता रहे।
1: बिल्कुल।
2: पता लगा गिनने में हम आधा घंटा व्यतीत कर दिए, हम आनंद नहीं उठा पाए। ताल एक ऐसा चीज है कि आपके दिल की धड़कन है, वो जो धड़कता है वो एक रिदम है, आप चलते हैं वो एक ताल है। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं पंचम सवारी।

0: हमारे फारूक भाई ने जो नगमा इसका रचा है, इसकी आने की गति कैसे है? धी ना धी धी कत धी धी ना धी धी ना तिकृति ना तिरकिरतो ना कत्ता धी धी ना धी ना धी धी कत धी धी ना तिकृति ना तिरकिरतो ना कत्ता धी धी ना। अब वो जो आ रहे हैं धी धी ना
1: क्या बात,
0: उसी का अंदाज है। ये पंचम सवारी है, अब उसी का अंदाज का एक गजंपा ताल। इस सब तालों में आप सोलो बजा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आनंद कब लेंगे हम? तो गजंपा ताल है, धा अधिन नक तक धा अधिन नक तक तिन नक तक तेटे कत गदीगी न आ अधिन नक तक। ये गजंपा ताल है, पंचम सवारी सुनिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि बनारस वाले बाएं में घिसी बहुत देते हैं, ये धी ना ये मीड है, तो जब तक घिसी नहीं देंगे आनंद नहीं आएगा
1: जी।

0: एक बंदी से प्रस्तुत कर रहा हूँ ना धी धी कत धी धी ना धी धी ना ते कृति ना तेरे के रतो ना कत्ता धी धी ना धी धाते टे दीड़ ना ते टे किरता के तुम तो नागे ती टे धागे दीगी ना नागी ना धित धित तड़ंग धित ता किरता के धित ता किरता के दीड़ ना ते टे ता घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था धीना। इसको कहते हैं बादल परण।
1: अच्छा,
0: ये खास बनारस संघ का बाज है बादल परन। तो बादल कैसे घिरता है उसी का है
1: जी।

अंदाज देखिए इसका, गैपिंग को देखिए, अब इसका अंदाज क्या है? 14 का पल्ला है ये, 15 मात्रे का बोल है इसकी पहली, इसका पहला आवर्तन 14 पे खत्म होता है।

बहुत से कलाकार इस धरती पे, तबला वादक की बात कर रहा हूँ, अनोखेलाल जी, किशन महाराज जी, गुदई महाराज जी, उनके पुत्र पूरन महाराज जी, हमारे गुरु पंडित मदन मिश्रा, पंडित शंभुनाथ मिश्रा, अब्बा जी का बहुत योगदान रहा, अहमद जान थिरकवा का स्टाइल।

अलग था, हबीबुद्दीन खां साहब, निजामुद्दीन खां साहब। अब एक बोल सुना रहा हूं निजामुद्दीन खां साहब का। धीना धी धी कर धी दीना धी दीना थी कृतीना तेरी कृत तू ना कत्ता धी दीना धी कदा भी ना दिग धी कृत कदा तक तक तक धीन धातां था कद तक तक धीन धातां था अधातां

0: ये था हमारा पंचम सवारी।
1: मिश्रा जी, बहुत खूबसूरत पंचम सवारी आपने बजाई, लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं जानना चाहूंगा
0: जी।
1: क्योंकि आपने यंत्र संगीत के साथ बजाया है, गायकों के साथ बजाया है और नर्तक और नर्तकियों के साथ भी आपने बजाया है
0: जी।
1: फिल्म में भी आपने कुछ बजाए होंगे जरूर, तो उसके बारे में हमें बताएं।
0: दास बाबू, इंस्ट्रूमेंट के जितने भी आर्टिस्ट आज भारत में हैं, मुझ पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि मैंने सभी के साथ साथ संगत निभाया, किया भी। रहा फिल्मों का सवाल, तो कथक डांस में जितने भी कलाकार हैं आज भारत में, महाराज जी से लेकर जितने भी हैं, मुझे मौका मिला स्टेज पर। रहा फिल्म का सवाल, तो फिल्मों में मैंने, मुझे बजाने की रुचि बहुत कम रही। हाँ, ये है कि हरिप्रसाद चौरसिया जी से मेरा अच्छा ताल्लुक था, तो सिलसिला में लेके चले गए। उसके बाद हमने सूरज पिक्चर में बजाया, उसके बाद हमने विजय पिक्चर में बजाया, फिर एक पिक्चर का नाम मैं भूल रहा हूँ जिसमें मेरा तबला और पखावत दोनों है, ऋतिक रोशन है, उसमें वो दौड़ते हैं, दौड़ने का फाइट सीन था, ऐसा कुछ करके रेला बजाया हूँ। अभी बहुत पॉपुलर पिक्चर रहा देवदास
1: जी,
0: तो माधुरी जी के साथ, उनके साथ मैंने काफ़ी एल्बम बनाया। जैकलिन के साथ भी मैं बजाता हूँ, लेकिन उनको रियाज करवाता हूँ, अब स्टेज पर वो मौका नहीं मिला। हेमा जी का काफ़ी एल्बम बने किया, हम और भवानी शंकर भी थे उसमें। माधुरी जी का गाना बहुत फेमस है देवदास में
1: जी,
0: धाय श्याम, उसमें कोरियोग्राफ हमारे भारत के बहुत बड़े कलाकार बिरजू महाराज जी ने किया है। दूसरी बात, हमारे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो अच्छा अभी भी म्यूजिक देते हैं, लेकिन संजय लीला बंसाली का एक खासियत रहा कि वो जब भी फिल्म को यूज़ करते हैं तो उसमें क्लासिकल बेस रहना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि एक गाना कोई जिसमें माधुरी जी का डांस है, श्रोताओं को सुनाने का कष्ट करें।
2: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, ओ

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी 9वीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भूले बिसरे की।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, शाहबाद की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए क्यों स्कैम करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

नमस्कार। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बसंत बहार फिल्म के इस गाने के साथ, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
4: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
5: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पारस मनी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: प्यार का बंधन। इस फिल्म से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल रवि का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय

0: दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
3: सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं ये दिल किसको दूं, इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल और संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: किसको दूं, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफी ने और इनका साथ दे रही थी उषा खन्ना।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे मुलजिम, इस फिल्म से ये गाना। शकील बदायूनी के बोल, रवि का संगीत।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
2: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
2: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे मुझे जीने दो, इस फिल्म से ये गाना साहिर लुधियानवी के बोल जयदेव का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मल क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मल क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्य।

नमस्कार, हमेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तीन देवियां फिल्म के इस गाने के साथ, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: Pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot p

मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे गोमती के किनारे इस फिल्म से गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे 9-2-11 इस फिल्म से गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने, पर इस अंतराल के बाद।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, मुकुल रॉय का संगीत।

एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।

0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे अब क्या होगा। इस फिल्म से ये गाना सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे दूसरा आदमी। इस फिल्म से गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना

0: वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पोकलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह

0: विवाह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी के निशान से ऊपर बह रही है, हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछी अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
0: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय

0: जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आंखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आंखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं। कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है। नेत्रदान का महत्व अनमोल है। ये दान दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आंख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का

नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है, किसी को प्रकाश का उपहार देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा, उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं तो यह कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम रहती है। ये परोपकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन. कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक.

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के इस गाने के साथ। चेन्नई श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

हैप्पी एंडिंग से आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह और प्रिया सरैया की आवाज में ये गाना। प्रिया सरैया के बोल और सचिन जिगर का संगीत।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर. फोन 8950633224.

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: कार्यक्रम बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: उदित नारायण और आशा भोसले के साथ साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

0: आप सुन रहे थे लगान फिल्म से ये गाना। वैसे लगान फिल्म बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का हर एक कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग रहा है, खास तौर से लाखा का कैरेक्टर जो बहुत ही चर्चित रहा। इस रोल को निभाया यशपाल शर्मा ने, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग रही है कि जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शकों में एक उत्साह सा आ जाता है कि अब कुछ दमदार होने वाला है। खैर, एक बहुत ही खास बातचीत, एक खास मुलाकात इस शख्सियत के साथ आज शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉयड के सितारे में अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।
1: सिर्फ ₹1 में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और ₹2399 का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में

0: बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
1: विशाल ददलानी के बोल और संगीत है विशाल शेखर का।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

जाने तू या जाने ना, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना बेनी दयाल और साथियों की आवाजों में, अब्बास टायरवाला के बोल, एआर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मर्डर 3 इस फिल्म से। शफकत अमानत अली की आवाज में सईद कादरी के बोल और प्रीतम का संगीत।

चित्रलो कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, चांदनी चौक टू चाइना इस फिल्म से। शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में रजत अरोड़ा के बोल शंकर एहसान लॉय।

0: इसी गीत के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: हे चंडीगढ़, मैं विवेक ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच। अगर आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह, कहानी, ट्रेडिशन या टैलेंट है जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस माई वेव्स पर लॉग इन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो को 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम्स।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।

0: तेल।
1: अब पेश है प्रोग्राम आज का अखबार।
2: आज का अखबार।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का अखबार प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं मैं रूही। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे होंगे, है ना? खैर, आप सबकी खुशहाली की कामना करते हुए आज के प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना अपनी समाप्ति की ओर है। 28 अगस्त को समाप्त हो जाएगा और बीता सोमवार जो था सावन का आखिरी सोमवार था और ट्राई सिटी के सभी शिवालयों में भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। सभी मंदिर भव्य तरीके से सजाए गए थे। मंदिरों में सुबह से ही भक्तजनों की लाइनें लग गई थी और सभी शिवालय हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से गूंजते सुनाई दिए। भक्तजनों ने परिवार के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, बेलपत्र, फल, दूध अर्पित करके सुख समृद्धि की कामना की। साथ में जो सावन के व्रत करते हैं उनके लिए भी बेहद खास था बीता सोमवार। जी हां, भोलेनाथ से आखिरी व्रत करके अपने लिए, परिवारक मेंबरों के लिए विशेष मांगते हुए नजर आए सभी भक्तजन। तो हमारी भी यही दुआ है कि आप सबकी विशेष पूरी करें भोलेनाथ।

दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे कि सब जानते हैं कि देश के हर जिले की अपनी एक खास पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। तो पंजीकरण कैसे करें? माई वेव्स पर जाकर वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर लॉग इन करें। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और सबमिट कर दें। प्रविष्टियां यानी कि एंट्रीज 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक स्वीकार की जा रही हैं। तो अगर आपके शहर, गांव या जिले में भी कोई ऐसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी है जिसे देश को जानना चाहिए, तो उसे कैमरे में कैद कीजिए और जेम्स ऑफ इंडिया का हिस्सा बनिए, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छुपे उन अनमोल जेम्स में है जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं न्यूज हेडलाइंस की ओर। पहले नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थायी समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 साल पूरे हो गए हैं। डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में आई तेजी का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया।

और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में आई तेजी का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा फीस को 99 लाख करने का प्रस्ताव रखा है। आप सुन रहे थे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत। अब सुनिए रीजनल न्यूज हेडलाइंस। पंजाब में अब डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सिर्फ स्वास्थ्य विभाग नहीं बल्कि 6 सरकारी विभाग और एजेंसियां एक साथ मैदान में उतरेंगी और छापेमारी करेंगी और लापरवाही करने वालों पर केस किया जाएगा। बीते सोमवार को पटियाला जिले के गांव देधना से राज्य को अलग अलग जिलों में बनाए गए 509 से ज्यादा आधुनिक ग्रामीण खेल मैदानों का उद्घाटन हुआ। युवाओं को समर्पित खेल मैदानों की गिनती 734 हो गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने संपत्ति पर कब्जे और मालिकाना हक से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि लंबे समय से किसी संपत्ति पर कब्जा होने से व्यक्ति उसका मालिक नहीं बन जाता। और जनगणना 2027 के तहत हरियाणा में परिवारों से 40 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें जाति, धर्म से लेकर शिक्षा, रोजगार भी दर्ज होंगे। ये थी रीजनल न्यूज हेडलाइंस। अब लोकल न्यूज हेडलाइंस। GMSS 16 के इमरजेंसी में डेंगू के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 2 महीने में डेंगू के 5 मरीज सामने आए हैं और स्वाइन फ्लू के जनवरी से लेकर अब तक 15 मामले सामने आ चुके हैं। सेक्टर 7 चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बीते सोमवार को लोक भवन क्रेच का उद्घाटन किया। पेरेंट्स अब अपने बच्चों को CCTV से लाइव देख सकेंगे। सावन के चौथे और आखिरी सोमवार पर मोहाली फेज 1 के प्राचीन श्री शिव मंदिर में श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। बर्फ से 10 फुट का शिवलिंग बनाया गया जिससे अमरनाथ जैसा एहसास हुआ। PGI में एक साल में ग्लूकोमा से जूझ रहे 7,269 बच्चों का इलाज और नियमित निगरानी की गई और बच्चों की आंखों की रोशनी को बचाया गया। कल यानी 26 अगस्त को ईद मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जाएगा। इस मौके पर साबरी मस्जिद से शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें बड़ी गिनती में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। और जरूरी मरम्मत के चलते आज सेक्टर 33-34 के कुछ हिस्सों में सुबह 9 से 11 बजे तक

और सेक्टर 24-63 गांव बुड़ैल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। आप सुन रहे थे रीजनल और लोकल न्यूज हेडलाइंस।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: दोस्तों, बारी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की। कोलंबो टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 503 पर 9 का विशाल स्कोर बनाया और श्रीलंका को बैकफुट पर धकेल दिया। मुकाबले के दूसरे दिन ध्रुव जुरेल ने शतकीय पारी खेली। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर खत्म हो गया है। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने को करो या मरो मुकाबले में भारत को अर्जेंटीना के हाथों 3-5 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। ग्रैंड चेस टूर ग्रैंड फिनाले के सेमीफाइनल में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर 9-3 की बढ़त बना ली है। प्रागी ने 55वीं चाल में जीत दर्ज की। फुटबॉल में डिफेंडिंग चैंपियन बार्सिलोना ने ला लीगा के अपने शुरुआती मुकाबले में एल्चे को 5-0 से करारी शिकस्त दी। टीम के लिए डेब्यू कर रहे विंगर गार्डन ने 65वें मिनट में महज 5 मिनट में 2 असिस्ट किए। और भारत में प्रो रेसलिंग को नया मंच देने के लिए PWR यानी प्रो रेसलिंग रिबेलियन को पूर्व WWE रेसलर जीत रमा उर्फ स्तेंद्र डागर ने लॉन्च किया

29 अगस्त को लुधियाना में फाइट होगी। दोस्तों आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स हेडलाइंस।

0: दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम आज का अखबार अब समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।
1: आज का अखबार।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिकों को दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी

0: नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय दूतावासों की डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झींग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध को मजबूत करना है। भाजपा के महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
3: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
2: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
3: ये दोनों ऑफर्स 12 सितम्बर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
4: सूट, साड़ी, लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कार्यक्रम सफर सुरीला सा में। आज के सफर में हम आपको लेकर चल रहे हैं यादों और मेलोडियस गानों की एक खूबसूरत दुनिया में, जहां संगीत की हर एक धुन दिल को छू जाएगी। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे गीत के साथ। ये फिल्म जुर्म का है, जिसे लिखा है इंदीवर ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन जी ने और अपनी मधुर आवाज से इसे यादगार बनाया है कुमार सानू और साधना सरगम जी ने।

SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.

आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा गीत जो फिल्म दीवाना से है। इस गीत के गीतकार हैं समीर, संगीत दिया है नदीम श्रवण की जोड़ी ने और इसे गाया है विनोद राठौड़ ने।

दिल को बहलाने वाली उन प्यारी यादों के बाद अब वक्त है एक रोमांटिक और बेहद हसीन गीत का। फिल्म मिस्टर इंडिया का यह गीत संगीत की दुनिया में एक अलग ही पहचान रखता है। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसे गाया है किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से.
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर.
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध.
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 या हमें फोन करें. हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846.
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़.
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीलासा FM 107.2 MHz पर. आइए सुनते हैं अब एक थिरकने वाला गीत जिसे गाया है नीरज श्रीधर ने.

कयामत से कयामत तक का एक बेहद खूबसूरत गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद और आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: स्पीकर यूथ आइकन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सीवी में भी कोई ऐसी जगह है या कहानी है, ट्रेडिशन या टैलेंट जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज अ चांस फॉर यू ऑल। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में आप 1 से 3 मिनट की अपनी वीडियो बनाएं और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने बताइए। बस आपको क्या करना है कि माई वेव्स पर आपको लॉगिन करना है और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक आपने अपलोड करनी है। डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट टू, सो यू क्रिएट देन पोस्ट देन यू हैव टू स्प्रेड इट इन द होल इंडिया। थैंक यू।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में एक बहुत प्यार भरा नगमा।

सफर को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं फिल्म शक्ति का एक ऐसा गीत जो दिल की बातें खुलकर कह देता है। इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और अपनी आवाज से इसे सजाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

दोस्तों, सफ़र का कारवां अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है और इस सुहाने सफ़र को पूरा करने के लिए आइए सुनते हैं फिल्म कहो ना प्यार का ये गीत। इस प्यार भरे नगमे के बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने और अपनी खूबसूरत आवाज़ से सजाया है लकी अली ने।

0: तो दोस्तों, ये था कार्यक्रम सफ़र सुरीला सा। उम्मीद है आपको हमारा ये संगीत का सफ़र बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ अब अपने दोस्त चैतन्या को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
3: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
2: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
3: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य। आज ही अपनाएं BSNL।
4: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब पेश है प्रोग्राम FM लाइफलाइन।

फोन इन प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आई एक्सपर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी हिमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़, प्रोफेसर अमित गुप्ता। प्रोफेसर गुप्ता कॉर्निया और कैटरेक्ट सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। चूंकि 25

0: अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। बस इसी पखवाड़े को ध्यान में रखते हुए आज के इस प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट हमें जानकारी देंगे, नेत्रदान के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। कुछ सवाल हमारे होंगे, कुछ आपके होंगे। तो पहले डॉक्टर अमित गुप्ता, प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: हमारे श्रोता आपसे सवाल करने के लिए तैयार हैं, तो पहले इनके सवाल सुनते हैं, फिर उसके बाद कुछ सवाल हमारे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नाम बताइए।
2: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
2: जी बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा, तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं आई एक्सपर्ट डॉक्टर अमित गुप्ता।
2: डॉक्टर साहब से नमस्कार।
1: नमस्कार जी राकेश जी।
2: मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि कोरोना ट्रांसफर करते हैं, क्या उनको ब्लड टेस्ट करते हैं कि उनकी ब्लड कितना कम है, तब क्या कोरोना ट्रांसफर हो सकता है, मेरा ये प्रश्न है।
1: बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि इसमें बेसिकली जब हम आंखों की डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं डोनर से, वो ये देखने के लिए कि कुछ ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस है या कुछ और बीमारियां हैं जो आइदर सर्जन या जिसको हमने कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है उसमें कोई बीमारी तो नहीं पास हो जाएगी, इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं।
2: खरीदने के लिए धन्यवाद।
0: राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल के लिए। एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
3: मेजर विजय आर्या, HM42 फेज 2 मोहाली चंडीगढ़ जर्मनी, स्विट्जरलैंड से बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
3: स्विट्जरलैंड जर्मनी से सर, अभी मैं जर्मनी आया हूँ तो यहाँ से घूमने स्विट्जरलैंड आए हुए हैं।
0: अच्छा।
3: तो था तो मेरे को हाँ। तो मेरे को पता था आज मेरा चंडीगढ़ लगा रहता है इसमें, तो पता था आज डॉक्टर साहब 3:30 बजे तक बात करेंगे।
0: डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे साथ हैं, स्विट्जरलैंड में आप बैठे हैं और वहाँ बैठे बिठाए आपको जानकारी मिलेगी, पूछिए अपना सवाल।
3: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कुछ आंखों के बारे में सर।
0: जी कहिए।
3: डॉक्टर ऐसा, मैं आज आई डोनेशन का काम करता हूँ, बॉडी डोनेशन आई डोनेशन का भारत में, क्योंकि अभी तो 15 दिन के लिए यहाँ आया था, पर मेरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आपसे पूछना था एक जानकारी सर उसके लिए।
0: जी
3: मेरे वहाँ चंडीगढ़ में 5 सेक्टर में ओल्ड एज होम है, वहाँ सभी के मैंने फॉर्म भरे हुए हैं बॉडी डोनेशन के, तो मेरे को सब पूछते हैं कि हम आंख दान करना चाहते हैं तो क्या उसी में भी वही काम हो जाता है ना।
1: मेजर साहब नमस्कार जी, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब है कि आप रियली कंसर्न हैं इस विषय के बारे में। बेसिकली बॉडी डोनेशन जब होती है तो आई डोनेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट।
3: कई सब पूछते हैं हमें सिर्फ आंख दान करनी है, ये मैं इसका मेरा क्वेश्चन, उनको क्या जवाब दिया जाए?
1: बेसिकली क्या है कि जब आंखें हम दान एक्सेप्ट करते हैं फैमिली से जिसकी डेथ हो गई है उस पर्सन से, तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चाहे वो डोनर है चाहे वो रजिस्टर्ड डोनर नहीं है, ये आंखें दान दी जा सकती हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि लोगों के मन में एक ये गलत फहमी होती है कि अगर हम रजिस्टर्ड डोनर नहीं है तब भी हम क्या आंखें दान दे सकते हैं। तो द आंसर इज येस, एनीबडी कैन डोनेट आईज, चाहे वो रजिस्टर्ड डोनर है या नहीं है। अगर किसी मेंबर ऑफ द सोसाइटी की डेथ होती है एंड उनके फर्स्ट फैमिली ब्रदर सिस्टर फादर मदर या बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि आईज डोनेट करनी चाहिए, तो दे शुड कॉन्टेक्ट द नियरेस्ट आई बैंक और वो उनसे सिग्नेचर करा के कॉन्सेंट फॉर्म करा के दे विल एक्सेप्ट द आईज फॉर डोनेशन। ये जरूरी नहीं है कि कार्ड भरा होना चाहिए पहले से।
3: मैं ये जानना चाहता हूँ तो क्या बताऊँ कि खाली आप आंख दान भी कर सकते
1: हैं,
3: आंख दान लेने घर आ जाते हैं, ऐसा कुछ है सर प्रोविजन?
1: नहीं आ जाते हैं, वो सिर्फ आंखें भी दान कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: अच्छा
1: हाँ जी।
3: अच्छा फिर उसके बाद आपने चाहे तो बॉडी लेके आ सकते हैं, कुछ भी करे हो।
1: एक और ये भी सवाल है कि लोग कहते हैं कि क्या बॉडी को लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ भी बॉडी होती है हमारी टीम जाती है वहां से और आंखों को रिट्रीव करती है।
3: मैं जानना चाहता हूँ, वही जानना चाहता
1: हूँ। हाँ जी वो हमारी टीम आएगी और रिट्रीव करेगी, बॉडी को लाने की जरूरत नहीं होती है हॉस्पिटल में।
3: ठीक है, तो मेरे को बहुत सी क्वेरी आती है क्योंकि मैं चंडीगढ़ में यही काम करता हूँ समाज सेवा का।
0: हाँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मेजर आर्य।
3: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत
1: धन्यवाद जी, थैंक यू।
0: प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
4: हाँ सर जी, मेरा नाम गुरविंदर सिंह, मैं अमरगढ़ मलेरकोटला तो बोल रहा हूँ जी।
0: जी फरमाओ जी।
4: सर जिदा धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का, आकाशवाणी चंडीगढ़ का, जेड़ा कि 25 अगस्त

0: हमारी बॉडी का एक पार्ट हम डोनेट कर रहे हैं,
1: उससे निकाल देंगे
0: हाँ। तो अगले जन्म में वो पार्ट तो हमने दे दिया किसी के, दान कर दिया,
1: अंधे ना हो
0: अगले जन्म में। ये आई थिंक सबसे बड़ी जो एक जो मिथ या सुपरस्टिशन ये है। और जैसे कुछ रिलीजन्स हैं, बुद्धिज्म है और कुछ और जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ आई डोनेशन है।
1: अच्छा।
0: और जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है, हाँ। उसमें वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी कोई कमी नहीं है कॉर्नियाज की, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा लोग डोनेट करते हैं।
1: अच्छा, वहां कोई दिक्कत नहीं आती?
0: वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस हिसाब से तो यूएसए में ज्यादा ब्लाइंड होने चाहिए कि वो ज्यादा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हाँ। ज्यादा आई डोनेशन कर रहे हैं। तो ये एक आई थिंक इस मिथ्या को और इस सुपरस्टिशन को हमको दूर करना है। तो दूसरा ये होता है,
1: काफी चैलेंजिंग रहता होगा आपके लिए,
0: चैलेंजिंग, हाँ। क्योंकि कभी कभी आई फील कि मे बी जो रिलीजियस बॉडीज हैं या कुछ जो लीडर्स हैं, आई थिंक उनका भी एक रोल है इस चीज में, कि दे शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड वो यही मैसेज दें लोगों को कि आगे आके आंखें दान करें। हम कोशिश कर रहे हैं जैसे कि लोगों में इसी चीज की नॉलेज बढ़ाने के लिए कि आगे जाके आंखें दान करें।
1: ऐसे लोगों का अगर आप कोई वर्कशॉप लगाएं, उनको जागरूक करें, हाँ। मुझे लगता है कि वो बात और जल्दी लोगों तक पहुंचेगी। हमारे एक और श्रोता ऑनलाइन है। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए।
2: मैं जीटीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ सर।
1: जी अंसारी जी, फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे?
2: सर मैं ड्रेसिंग के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जैसे आंखों की कई बार जैसे अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चाहती है आंखों की, सब तो बड़ी समस्या तो ये बरसात के मौसम में एलर्जी की होती है। अगर बार बार एलर्जी हो जे कौन से सिम्टम हो सकते? और दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कि मोतिये की प्रॉब्लम होती है किसी को भी, या कोई नंबर प्लेट लगी हो आंखों की, आईज रोशनी कम होती हो, अगर जो रोशनी डलवाते हैं वो बेनिफिट होती है या लेंस डलवाने की बेनिफिट होता है सर?
0: इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर मोतिया तो लेंसेज डालने चाहिए, ठीक है ना। एक बड़ा छोटी सी जो मैं बात बोलूंगा वो ये है कि अगर आप निगाह चेक कराते हैं कोई ऑप्टिशियन की दुकान है, वो चश्मे का नंबर चेक करके इस बात को गांठ बांध कि अगर कोई ऐनक का नंबर चेक करके आप 6/6 नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपने जाके आंखों के डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद आंखों के डॉक्टर का ये काम है देखना कि वो निगाह की क्यों इम्प्रूव नहीं कर रही है, वो फिर उसको अकॉर्डिंगली आपको मैसेज देख के आपको बता दें।
1: 6 महीने में एक बार निगाह अपने चेक करवा लेनी चाहिए क्यों डॉक्टर साहब?
0: 6 महीने से साल में जिसका नंबर कोई है नहीं है, 20-25-30 साल का इंसान है और ऐनक नहीं लगाता है, उसको चाहे 1-1.5 साल में भी एक बार चेक करा ले, इट इज गुड इनफ,
1: हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी। तो डॉक्टर साहब ये तो जागरूकता की बात आपने बताई, बड़े विस्तार से आपने समझाया कि किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और किस तरह से सबको समझाया जा रहा है कि ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन इसीलिए नेत्रदान महादान कहा जाता है कि इससे ऊपर दान कोई नहीं है, किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी ये भर देता है। अब सवाल ये आता है कि नेत्रदान कौन सा व्यक्ति कर सकता है?
0: पुनसा बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जो हमारी मेजॉरिटी डोनेशंस होती हैं दे आर फ्रॉम जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर होती है, तो उसमें ये होता है कईयों का ऑपरेशन हुआ होता है, किसी का कैटरेक्ट सर्जरी हुआ होता है, किसी को ब्लड प्रेशर है या कोई ऐनक लगाता है या कोई और कोई बीमारी है। तो बाय एंड लार्ज आप ये मान के चलिए कि तकरीबन सभी लोग आई डोनेट कर सकते हैं, और सिर्फ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो रेसिपिएंट में या जो टीम सर्जरी कर रही है कि उनको उस बीमारी का ट्रांसमिशन का कोई खतरा ना हो, उसके लिए वो जो टीम आती है उनका काम है स्क्रीन करना कि कौन पेशेंट फिट है कौन नहीं है। फॉर एग्जांपल रेबीज, हेपेटाइटिस, कोई जॉन्डिस, कुछ सेप्टिसीमिया, ये ऐसी कुछ कंडीशंस और कुछ और कंडीशंस हैं जिसमें हम मना कर देते हैं कि हम आई डोनेशन नहीं लेंगे, परंतु जो जनता है उनके पास ये मैसेज होना चाहिए कि इसमें ना झिझके, ये आई बैंक के स्टाफ का काम है ये देखना कि वो अनफिट तो नहीं है। अगर अनफिट नहीं है तो वो आपको ये मैसेज समझा देंगे कि क्यों अनफिट नहीं है टू रिसीव टू डोनेट द आईज।
1: जी इसका मतलब परिवार वालों को भी जो टीम आई है उसे पूरी पूरी जानकारी देनी चाहिए।
0: ये हाँ, इनको पूरी जानकारी देनी चाहिए।
1: दान तो तभी सफल होगा ना।
0: क्या कोई बीमारी तो नहीं, हाँ। थी, क्रॉनिक इलनेस थी या लिवर फेलियर था या कोई और प्रॉब्लम थी, तो ये वैसे आई बैंक वाले भी पूछते हैं, बट अगर नहीं भी, अगर

0: आपको पता है तो ये जानकारी देनी चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, किसी का ऑपरेशन हुआ है आईज का, या किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, ऐसी स्थिति में
0: इसमें हम डोनेशन को एक्सेप्ट करते हैं एंड उसको हम असेस करते हैं। आई बैंक का काम सिर्फ आई कलेक्शन का नहीं है, इसका काम हम बहुत सोफिस्टिकेटेड टेस्ट करते हैं, एंडोथीलियम को देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, ग्रेड करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं वो किस टाइप की सर्जरी के लिए यूज होनी चाहिए। दो तीन तरीके हैं आईज को डोनेशन के लिए रिमूव करने के लिए। एक होता है कि हम सिर्फ जो पुतली, जैसे घड़ी का शीशा होता है, सिर्फ उस पोर्शन को हम रिमूव कर देते हैं,
1: पुतली
0: जो पुतली होती है उसके आसपास का थोड़ा सा टिश्यू, या कभी कभी हम पूरे ग्लोब को रिमूव करते हैं बट हम उसके अंदर हम आर्टिफिशियल आई फिट कर देते हैं ताकि उसमें तकरीबन और आंख को ऐसे तरीके से बंद किया जाता है कि ज्यादा बिल्कुल कॉस्मेटिकली डिसफिगर नहीं होती है बॉडी। ये उसको एक कॉटन बॉल से हम उसकी जो शेप है उसको रिस्टोर करते हैं ताकि कॉस्मेटिकली आई जो है देखने में डिसफिगर ना हो बॉडी, और ना ही इसमें कोई फ्यूनरल अरेंजमेंट्स में कुछ देरी होती है या क्रीमेशन में देरी होती है बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट प्रोसीजर। ये 15-20-25 मिनट का प्रोसीजर है, तो अगर ठीक टाइम पर अगर आप टीम को कॉल कर लें तो वो आके 1.5-2 घंटे के अंदर दे विल कंप्लीट द होल प्रोसीजर।
1: डॉक्टर गुप्ता ये सही समय आपसे जानना चाहते हैं, कोई कहता है 6 घंटे, कोई कहता है 8 घंटे, किसी परिवार में ऐसी स्थिति आ जाती है उस समय हमें क्या करना है?
0: ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एवरीबॉडी गेट्स इज इमोशनल, तो उनको
1: जी बहुत भावनात्मक स्थिति होती है,
0: ये हिसाब नहीं रहता कि क्या करना है। एक चीज मान के चलिए कि जितना जल्दी आप आइस डोनेट करेंगे उतना बेटर उसको हम यूज कर सकेंगे। पहली चीज
1: कितना जल्दी,
0: जितना जल्दी हो सके, बट डेफिनेटली 4-6 घंटे के अंदर फर्क पड़ जाता है कि जब हम आइस को एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड है कि जैसे गर्मियां हैं या सर्दियां हैं, मौसम कैसा है, किस हिसाब से बॉडी को रखा गया है, अगर बॉडी किसी मॉर्चरी में फ्रीजर में रखी गई है या आंख के ऊपर आइस क्यूब्स रखे गए हैं तो उसमें जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। बट ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे पे भी आप डोनेशन नहीं कर सकते हैं,
1: मतलब मौसम का भी फर्क पड़ता है कि सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम,
0: बॉडी कहाँ है, मैक्सिमम 8 घंटे के अंदर हो जाए फॉर द बेस्ट यूज। पर अगर उसके एक्सीड भी कर गया है वो आई बैंक का काम है उसको बेस्ट यूज करना, और किस तरीके से यूज करना हम असेस करके उस हिसाब से उसको यूज करते हैं।
1: और इतनी देर में आपकी टीम पहुंच जाती है जो सबसे समीप है?
0: हाँ, जो जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है फॉर एग्जांपल, तो हम सिर्फ नेबरहुड में ही जा सकते हैं 25-30 किलोमीटर के रेडियस पे, उससे ऊपर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम जैसे फॉर एग्जांपल करनाल से कॉल आया या लुधियाना से आया तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, तो हम लोकल ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को फैमिली को बोलते हैं कि वहां से टीम को आईज की डोनेशन एक्सेप्ट करके हमारे पास भेज।
1: मतलब अगर प्लेज करना है आई डोनेशन के लिए तो अपने लोकल जो आई बैंक है वहां प्लेज किया जाए या वहां फोन किया जाए?
0: उन सब ऐसा है कि वो डोनर है या नहीं है, अगर फैमिली डोनेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। सबसे बड़ा मैसेज ये है, एक डोनर का मतलब यह है कि एक इंसान की इच्छा है कि मेरे देहांत के बाद मेरी आंखों को दान दिया जाए, ये एक इच्छा है उनकी।
1: अच्छा,
0: पर अगर परिवार नहीं चाहेगा तो वो आई डोनेशन हम नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते,
0: वो सिर्फ परिवार के कंसेंट से ही होगा,
1: उनकी सहमति से,
0: उन्हीं की सहमति से होगा।
1: अच्छा, अच्छा,
0: नहीं तो ये आई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
1: अच्छा, किसी ने अगर प्लेज किया है, नहीं किया है,
0: नहीं
1: तो ऐसी स्थिति आती तो परिवार वाले अगर चाहें,
0: अगर चाहे तो मना कर देते हैं और अगर चाहे तो यस भी
1: दे भी सकते हैं।
0: हाँ,
1: अच्छा अच्छा, उनकी सहमति पर निर्भर करता है।
0: हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई रजिस्टर्ड डोनर नहीं है तो आंखें दान नहीं दी सकते।
1: जी जी, अब सवाल ये आता है कि प्लेज करना कैसे है, मैंने वचन देना है कि मेरे बाद भी ये आंखें दुनिया को देखती रहें किसी और की आंखों से।
0: एक चीज आप कर सकते हैं कि कोई नियर बाय हॉस्पिटल या आई बैंक है, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में पीजीआई है या मेडिकल कॉलेज है 32 सेक्टर में, तो उसमें आप जाके आप आई बैंक या आई डिपार्टमेंट जाके आप कह सकते हैं कि मैं डोनर बनना चाहता हूं, तो आपको फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भर के देंगे और हम आपको एक लैमिनेटेड कार्ड जो है वो बाय पोस्ट आ जाएगा या पिक कर सकते हैं वहां से। कुछ ऑनलाइन भी साइट्स हैं, जैसे हमारे एक क्यूआर कोड है जिसको भी हम आई डोनेशन 49 में फिर से डिस्प्ले करेंगे कि उसको स्कैन करिए, फॉर्म भरिए और यू कैन बिकम एन आई डोनर बेसिकली।
1: जी,
0: तो एक तो है कि आई डोनर बनना इतना मुश्किल नहीं रहा है, जो लोग चाहते हैं वो आके हमारे को कांटेक्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब हम बनना चाहते हैं।
1: प्लेज करना कोई मुश्किल नहीं,
0: प्लेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम और एक्सपेडाइट करने के लिए वी आर यूजिंग डिजिटल मीडिया नाउ।

0: हर फोर्टनाइट में आप तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, तो इस बार अपने शहर चंडीगढ़ में या आपके अपने डिपार्टमेंट में पीजीआई किस तरह के कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाने के लिए कर रहा है?
1: बेसिकली पीजीआई एक ऐसा अस्पताल है जहां पर तकरीबन 8-10 हज़ार पेशेंट डेली आता है, तो हमारे को अगर एजुकेट करना है तो हमारे लिए अपने इनहाउस पेशेंट्स भी बहुत हैं। पूरे हॉस्पिटल में हम ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे कि अगर आप आई डोनर बनना चाहते हैं या कुछ आई डोनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने कुछ क्यूआर कोड के साथ हमने बोर्ड लगाए हैं
0: पूरे हॉस्पिटल में।
1: हाँ, पेशेंट को
0: क्योंकि लाखों पेशेंट्स आते हैं,
1: लाखों
0: अलग अलग राज्यों से आते हैं,
1: है ना
0: जी जी।
1: और फिर हमने स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं हम कार्ड के ऊपर, ताकि अगेन टू स्प्रेड द मैसेज ऑन आई डोनेशन। कुछ कार्ड्स हैं
0: कि नजरों में रहे,
1: नजरों में रहे,
0: नजरों के लिए।
1: हाँ जी, हाँ जी, नजरों में रहे, नजरों के लिए, बिल्कुल सही है जी। और फिर हम वी आर डूइंग सम स्मॉल सेरेमनीज, जैसे हमारे प्रोफेसर विवेक लाल डायरेक्टर पीजीआई, तो उन्होंने वो बलून रिलीजिंग सेरेमनी करेंगे टू मार्क द स्टार्ट ऑफ दिस आई डोनेशन फोर्टनाइट। वी आर हैविंग वेरियस टॉक शोज इन डिफरेंट स्कूल्स एंड अदर कंपनीज एंड कॉलेजेस, जस्ट टू स्प्रेड द मैसेज। एंड ऑल्सो हम लोग ऐसे लेक्चर्स दे रहे हैं फॉर नर्सेज एंड फॉर अदर पीपल इन हॉस्पिटल, ताकि उनमें भी जागरूकता फैले कि क्या करना है आई डोनेशन के कारण। स्टाफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जैसे हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटेबल प्रोग्राम है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका स्टाफ आपका साथ दे, स्पेशली नर्सिंग स्टाफ, बिकॉज दे आर देयर ऑल।
0: पूरा टीम वर्क है,
1: पूरा टीम वर्क है जी। एक जिसके लिए मैं सबको इन्वाइट करना चाहूंगा, 3 सितंबर को शाम को 5 बजे हमारा एक अवेयरनेस वॉक है जो रॉक गार्डन से लेके सुखना लेक तक। उसमें एक स्कूल बैंड भी होगा, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल द पीपल टू जॉइन अस। थर्सडे को 3 तारीख को शाम को 5 बजे रॉक गार्डन से एक आई डोनेशन अवेयरनेस वॉक है
0: जी जी,
1: तो वहां से हम एक वॉक करके, एक बैंड भी है बच्चों का, तो वॉक करके सुखना लेक तक है,
0: और कोई भी उसे ज्वाइन कर,
1: कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता है
0: जी।
1: एंड तो इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय ऑल द हॉस्पिटल्स एंड चंडीगढ़ आई बैंक सोसाइटी। सो आई एम इन्वाइटिंग एवरीबडी टू ज्वाइन दैट विद द लायंस क्लब ऑल्सो। एंड ऑल्सो हम 5 सितंबर को जो हम फंक्शन करते हैं, हम पेंटिंग कॉम्पिटिशन करा रहे हैं या हम रील मेकिंग कॉम्पिटिशन करा रहे हैं स्कूल के बच्चों में, तो उनको हम एक अवार्ड सेरेमनी है, और जैसे किसी को ऑनर करना है हमारे किसी डोनर को या रेसिपिएंट को, तो हम वो करेंगे। मैं हूँ,
0: उन्हें इनवाइट करेंगे आप पीजीआई में।
1: हाँ जी,
0: और छोटा फंक्शन सम्मान देंगे।
1: हाँ जी, जी। सम्मानित करने के लिए और बच्चों को कुछ प्राइजेस देने के लिए।
0: मतलब इस फोर्टनाइट में बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई इन्वॉल्व हो जाएगा।
1: हाँ जी, यही हम चाहते हैं।
0: लक्ष्य ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़े।
1: हाँ जी,
0: और जो आपके पास बैकलॉग है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, तो लोगों को रोशनी मिले।
1: करेक्ट, बिल्कुल जी।
0: अच्छा डॉक्टर अमित गुप्ता, ये तो आज हमने खास तौर से बात की आई डोनेशन के बारे में। हमारे सामने डॉक्टर हो आईज का, और ये ना पूछें कि आईज का ख्याल कैसे रखा जाए, तो बातचीत तो अधूरी रह जाती है। तो बताइएगा, हम अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें?
1: ये सवाल आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि क्योंकि ख्याल रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं।
0: अब कुछ एक चीजें मोटी मोटी बता दीजिए।
1: अगर आप ये देखें कि आजकल के जमाने में और 50 साल पहले बहुत कम लोग ऐनक लगाते थे, अब ज्यादा से ज्यादा लोग ऐनक लगाते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाइज। उसके कुछ कारण हैं। एक ये है कि आउटडोर एक्टिविटी, जो लोग धूप में जाते हैं, इट प्रमोट्स द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आईज। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर है, अब सिंगापुर में अप टू मोर देन 80% ऑफ पॉपुलेशन इज वेयरिंग ग्लासेस बाय द एज ऑफ 18 ईयर्स। एक टाइम होता था अंधेरा हो जाता था, लोग जल्दी सो जाते थे, अब यह कि रात रात भर लाइटें ऑन रहती हैं घरों में, और उससे जो आंख की ग्रोथ है इट इज बींग अफेक्टेड इन अनदर वे। सो वन थिंग इज दैट यू हैव टू एक्सपोज द लाइट टू प्रॉपर सनलाइट, हैव आउटडोर एक्टिविटीज, जैसे गेम्स पीरियड होता है स्कूल में और बाकी आउटडोर एक्टिविटी
0: कम होती है,
1: उससे भी फर्क पड़ता है। और एट द सेम टाइम एट नाइट टाइम वी शुड ट्राई टू अवॉइड टू मच लाइट अराउंड अस जब हम सोएं।
0: तो हमारी यंग जनरेशन तो बहुत इस्तेमाल करती है, स्क्रीन टाइम बहुत है।
1: जैसे स्क्रीन टाइम भी बहुत है डेफिनेटली, जैसे कोई टैबलेट्स या फोन, बहुत अर्ली एज से बच्चे कुछ ना कुछ गेम खेल रहे होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं,
0: लगातार
1: देखते हैं, तो वो डेफिनेटली आजकल बहुत देशों में दे हैव बैंड द यूज ऑफ दिस।
0: अच्छा, अगर हम यूज करते हैं तो हमें कितना गैप रखना चाहिए?
1: उसमें वो कहते हैं कि एक तो पहली चीज़ है कि नॉट मोर देन

0: 1 to 1.5 hours पर डे, पहली चीज। प्लस उसके बीच में ब्रेक आनी चाहिए। एक सिंपल रूल जो है वह है रूल ऑफ 20। सो यू कैन वॉच फॉर 20 मिनट्स एंड आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स बाय लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट विच इज 20 फीट अवे।
1: ओके,
0: सो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आप 20 सेकेंड्स के लिए 20 फुट दूर एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यू आर टेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन अवे फ्रॉम द स्क्रीन। सो बाकी डाइट का बड़ा रोल है, बिकॉज
1: वो आपसे जानना चाहता हूँ डाइट के बारे में।
0: यू हैव टू ईट हेल्दी, ईट लॉट्स ऑफ लीवी ग्रीन वेजिटेबल्स, बिकॉज ऑफ कोर्स जो वाइटामिन ए एंड मल्टी वाइटामिन डेफिशिएंसी होती है, इट अफेक्ट्स आईज इन डिफरेंट वेज। आजकल जैसे ड्राइनेस बहुत कॉमन हो गई है
1: जी,
0: लोग कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं और उसके कारण जो है उनका ब्लिंक रेट आई का जो है कम हो जाता है। सो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, अब एसी से जो कंप्रेसर होता है उसके बाहर उससे पानी टपकते रहता है, इसका मतलब है वो अंदर से पानी खींच रहा है। इट इज ड्राइंग द एनवायरनमेंट,
1: ऐसे आंख के लिए होना चाहिए,
0: ठीक है ना। तो आंख भी ड्राई होती है
1: जी, जी।
0: तो जो लोग ऑफिस में कंप्यूटर पर, इट इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इसका नाम
1: जी,
0: है
1: जी, जी, जी।
0: तो अगेन द वे आउट इज टू ब्लिंक फ्रीक्वेंटली एंड नॉट स्टेयर एट वन थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सारी चीजों का
1: मतलब बीच में ब्रेक्स आते रहना चाहिए,
0: ब्रेक्स
1: तो वो आपकी नजर के लिए अच्छे
0: हैं, नजर के लिए अच्छा है।
1: और आईज के डॉक्टर को कब कब मिलना चाहिए?
0: एक तो बच्चों में स्क्रीनिंग एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चों का आई थिंक आजकल कुछ स्कूल्स में हमने जो देखा है देर इज अ स्क्रीनिंग स्केड्यूल की निगाह देखने के लिए। अभी भी एक पीजीआई का एक प्रोजेक्ट कैरी आउट हुआ था, तो उसमें भी देखा गया कि काफ़ी बच्चों को एनक की ज़रूरत थी बट वो चेक और फ्रीक्वेंटली चाहिए। सो उसको बच्चों को तो डेफिनेटली चेक कराना चाहिए। कुछ करेक्टेबल भी चीज़ होती है कि हम नंबर देके करेक्ट कर दें, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्क्रीन स्कूल चिल्ड्रन एट द राइट टाइम। एवरी वन ईयर तो आपको चेक कराना चाहिए, नंबर चेक कराना चाहिए, प्रेशर चेक कराना चाहिए, ताकि कोई काला मोतिया ना हो।
1: ठीक है डॉक्टर अमित गुप्ता, आप हमारे इस प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आए, आपने आई डोनेशन के बारे में, जो नेत्र पखवाड़ा चल रहा है उसके बारे में आपने जानकारी दी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश हो आपका?
0: मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नेत्रदान है वो महादान है, एंड इसमें बिल्कुल झिझकने की बात नहीं है। पीजीआई चंडीगढ़ का जो आंख दान करने का नंबर है
1: 708-700-8200 708-700-8200।
0: यस,
1: ये नंबर है, आपने डायल करना है।
0: हाँ,
1: और बाकी काम पीजीआई का,
0: बाकी काम पीजीआई का।
1: डॉक्टर अमित गुप्ता, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए FM लाइफलाइन प्रोग्राम में, आई डोनेशन के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। यहाँ पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंच साहब, आई रियली एंजॉयड, आई होप कि लोगों में ये मैसेज भी जाए, और आपके जो कॉलर्स थे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे थे
1: जी।
0: तो ये भी इस शोज की जानकारी लोगों में बढ़ रही है
1: जी, जी, जी,
0: तो
1: जी,
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों, इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी आकाश भारद्वाज ने, प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता रमन भगत। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनी आंखों का और अपने आसपास की आंखों का पूरा पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: 11:31 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है हमारा लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम, सुने हैं मित्रा दे।

0: हेलो।
1: हाँ जी, महकमे में आ चुके हैं जी।
0: हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, की हाल चाल है, की नाम थोड़ा, कितों बोल रहे हो?
0: मैं सर ममता एनक्लेव से बोल रहा हूँ।
1: ममता एनक्लेव कितने हुई?
0: ढकोली। ढकोली,
1: ढकोली जीरकपुर।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: हाँ जी, ना दसो
0: ना सर। हरिओम है, मेरे काफी दिनों बाद।
1: हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, बड़े चिरा मगर हो।
0: मगर कम से कम साल हो गया।
1: हाँ, बहुत देर, बहुत देर हो गई। सब ठीक ठाक है?
0: हाँ जी, हाँ जी, सब बढ़िया जी, बढ़िया
1: जी। की स्नेहा थोड़ा?
0: सुनिया यही है कि आप जैसे चलते हैं, कोई मोटर बाइक पे चलता है, या चल मोटर बाइक वाले नु ध्यान रखना चाहिए था, कोई पैदल चल रहा है तो बारिश में पानी जितने जाना पानी पर तेजी से ना जाए कोई।
1: अच्छा अच्छा, मतलब जो बारिश पै जाती है पानी खड़ा हो जाता है।
0: जब जब मोटर बाइक वाले वो पैदल वालों का ध्यान रखे, और जो गाड़ी वाला है वो मोटर बाइक वाला ध्यान रखे।
1: यानी अपनी गड्डी नु आराम नाल पानी चो कढ़ जावे ना।
0: हाँ, कई बार मैंने देखे बंदे जान के मारेंगे, जैसे वो आएगा धक्का था जान के उसी जगह पर मारेंगे।
1: कई बार जाने अनजाने च गलती हो भी जाती है।
0: हाँ नहीं, कई बार जाने अनजाने में भी हो जाती है, कई बार लोग जान बुझ के भी कर देते हैं।
1: एकदम ब्रेक लाओगा तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। देखो, मुख की गल है कि सड़क ते चाहे थोड़ा वाहन है या तुसी पैदल चल रहे हो, रिक्शा चो, साइकिल ते हो, हर एक नु हर एक दा ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ जिम्मेवारी वड्डी गड्डी वाले दी नहीं है, छोटी गड्डी वाले दी भी है, बाइक वाले दी भी है, साइकिल वाले दी भी है, हर एक दी जिम्मेदारी है।
0: राइट राइट। बड़े दिनों बाद कॉल लगा मेरा, बीच में मैं ट्राई भी किया था पर लग नहीं रहा था।
1: ते हरिओम जी, बहुत चंगा लग्या तुसी सानू भुले नहीं, याद रखिया, साडे नाल गलबात कीती, शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
1: प्रोग्राम सुने मित्रा ने जी।

0: अभी आपने लाइव फोन इन प्रोग्राम सुना सुनहे मित्रां दी। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र हिंदी समाचारों के लिए। बस अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में

0: जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आयरलाइंस के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 12:05 हुए हैं। आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले प्रोग्राम के लिए यादों की महफिल।

0: श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी निर्माता, निर्देशक और गीतकार सावन कुमार टाक को, जिनकी पुण्यतिथि पर उनके रचे और उनकी निर्देशित फिल्मों के गीतों के साथ उन्हें संगीत के सुरों में आज हम याद करेंगे। कभी गीतकार बनकर, कभी भावनाओं को शब्द दिए, तो कभी निर्देशक बनकर उन भावनाओं को पर्दे पर साकार किया। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही सावन कुमार टाक के कुछ गीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की,
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़ी पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
2: संघर्ष की डाल पर

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे से

साथियों, आप विविध भारती से इस समय सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम। और आपको बता दें कि आज दिन में 4 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2। और इस समय कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सौतन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। सावन कुमार टाक ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

महेश और किशोर का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए। इसे रचा है सावन कुमार ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम सनम बेवफा।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर, सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं येसुदास और अनुराधा पौडवाल के आवाजों में साजन बिना सुहागन। इस फिल्म का गीत इंदिवर की रचना, उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: बेवफा से वफा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसके बोल लिखे थे, उषा खन्ना का संगीत। रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर

0: का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे उषा खन्ना का संगीत। और साथियों, इस गीत से पहले जो गीत आपको सुनवाया वो था फिल्म लैला से, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। सावन कुमार के ने इसके बोल लिखे थे और उषा खन्ना का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा

0: कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉयस एन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सावन कुमार का रचा ये गीत। उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है। आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम अब

0: इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। और साथियों आपको बता दें कि आज आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे सावन कुमार टाक के लिखे हुए या फिर उनके निर्देशित फिल्मों से गीत।
1: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉग इन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है हमारे अभी से लेकर आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद हम आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में और फिर 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, पहले शाम 6:10 पर हिंदी में और फिर 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर।

दिन में 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। दिन में 2 आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। कार्यक्रम सदाबहार नगमे प्रसारित होगा दिन में 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 3:00।

शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार के बाद आप सुनेंगे कुछ पंजाबी गीत शाम 7:47 पर और फिर कार्यक्रम सुर सांझ में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में रात 8:00 आप सुनेंगे नाटिका

कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 पर। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए, और रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेत्री एवं पार्श्व गायिका विजेता पंडित पर केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम छाया गी

FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदाय के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा IFS के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले UPI की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। UPI के व्यापक पैमाने और पहुंच पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देशवासियों से UPI के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा 100 बिस्तरों के अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। श्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में ESIC श्रम विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ अंबाला छावनी में प्रस्तावित इस अस्पताल की स्थापना को लेकर समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 33 में 5 एकड़ 28 मरले से अधिक भूमि की रजिस्ट्री जल्द की

जाएगी तथा इसके बाद भूमि का कब्जा भी शीघ्र ईएसआईसी को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल के निर्माण से अंबाला सहित आसपास के क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों के लगभग 70,000 बीमाकृत श्रमिकों एवं उनके परिवारों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अस्पताल के निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। श्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला छावनी में बनने वाले ईएसआईसी अस्पताल की चारदीवारी का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही अस्पताल भवन का नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी ताकि निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में आगे बढ़ाया जा सके। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म जल्द होगी। श्री कृष्ण बेदी कल फतेहाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की शिकायतों का निवारण करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बैठक में 13 मामलों की सुनवाई की गई और 9 मामलों का मौके पर निपटान किया गया। श्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल एक या दो दिन में खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ सफाई कर्मचारियों की जल्द वार्ता होगी और उसके बाद हड़ताल को खत्म करने का ऐलान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की 14 मांगों में से 13 मांगे सरकार ने मांग ली है और एक मांग पर कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2026-27 के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य चंडीगढ़ के कुशल और प्रतिभाशाली युवाओं में व्यापक जागरूकता पैदा करना और उनकी आध्यात्मिक अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रशासक ने युवाओं से प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लेने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए कहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुआ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: आइए अब सुनते हैं फिल्म गुमराह का गीत, जिसके गायक हैं महेंद्र कपूर, संगीत दिया है रवि ने, गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी के।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: प्रस्तुत करते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रामपुर का लक्ष्मण का ये गीत। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं और संगीत है RD बर्मन का।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
2: अनगिनत के अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
2: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
5: इस संदेश से पहले आपने जो गीत सुना वो था वो कौन थी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, और इसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा है, मदन मोहन का।

आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था आहट। और एक साथ ही लिखते हैं, इबारत से उठाए शब्द से गीत और गीतों में छिपी इबारत की कहानी, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। गीत, हर गीत में कहानी होती है, चांद शब्द पर चांद फिर निकला, इस गीत में भी तो कहानी है। इंतजार शब्द वाले आपने चुने गीत के साथ दूसरे गीतों में भी तो कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई दूसरा गीत भी हो सकता है कि यहाँ पर जुड़ता हो, मगर उदाहरण के लिए आपको बताया जाए तो जैसे एक लाइन मैंने आप लोगों को असमंजस में डालने के लिए लिखी थी, वो आ गया और उसे पढ़ा भी इसी तरीके से था ताकि थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जाए और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा असमंजस में डाला जाए। तो अब चूंकि अगर ये गीत लिया जाता तो जो हमारे प्रोग्राम का जो एक तारतम्यता चल रही है, क्योंकि गीत के भाव अलग हैं, गीत जोश भरा है, तो यहाँ वो फिट नहीं बैठता। तो बस उसी को बताया जा रहा है कि कुछ गीत ऐसे हो सकते हैं, मगर हमने उन गीतों को चुना।

है जो कहानी में फिट होते हैं। और ऐसे और भी गीत हो सकते हैं, हो सकता है आपने जो बताया वो भी गीत ऐसे ही हो। जैसे कि देखिए, एक साथी ने लिखा है, कहा जाता है कि जो बात होठ तक होठ नहीं कह पाते वो नैना कह देते हैं। किसी के प्रति स्नेह हो, बिछड़ने का दुख हो या मिलन की खुशी, हर भावना सबसे पहले आंखों में झलकती है। यही कारण है कि कवियों ने नैनों को हृदय का दर्पण कहा है। एक साथी ने लिखा है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, ये वेदना उस नारी की है जो बेबस है, लाचार है परंतु चाहत से लबरेज है। तो आइए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इसे लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत।

0: तो इस गीत का शब्द था बरसात, जिसमें नायिका यानी कि ज्योति अपने साजन को बुला रही है कि बरसात में आ, क्योंकि बरसात की जो बूंदे हैं उसी की आहट से तो उसे लगा था कि शायद ये उसी का हमदम है, लेकिन वो तो बरसात की बूंदे निकली। एक साथी ने लिखा है, आहट गजलों का राजा कहा जाता है और इस गीत में उन्होंने संगीत को बहुत ही धीमा और गंभीर रखा है। गीत की धुन में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है जो अकेलेपन के एहसास को और गाढ़ा करता है। वायलिन और गिटार का न्यूनतम उपयोग गीत के दर्द को उभरने का पूरा मौका देता है। हमारे कई साथियों ने इस गीत को लेकर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं कि कई दिनों बाद उन्होंने गीत सुना और उन्हें पसंद आया। एक साथी लिखते हैं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत में एक लाइन लिखी है, वो ये कि हवा चली तो दिलबर की याद आई। दिलबर की याद है या कोई एसी कूलर पंखा है कि जिसके आते ही हवा चलने का एहसास शुरू हो जाता है? चलिए, ये तो आपने लिखी मजाक की बात, मगर ऐसा है जनाब कि कुछ अनुभव जो होते हैं वो जब आप खुद अनुभव करते हैं तभी समझ आते हैं। चलिए फिलहाल सुनिए ये संदेश, फिर सुनवाएंगे आगे के गीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: ज्योति की कहानी एक मोड़ लेने वाली है। जैसा कि बात एक रात की थी, आसमान में खोया खोया चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति ने अपने साजन का इंतजार किया, लेकिन इम्तिहा हो गई थी इंतजार की। फिर उनकी याद आई, हवा चली तो दिलबर की याद आई, तो गीत बजा, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। और इसी के साथ याद आई तो नैन भर आए, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। उसके बाद दिल ने कहा वो आ गया, पर उससे पहले तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। तो जरा सी आहट हुई तो लगा कि वो तुम ही हो। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि

SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.

चेहरा, ये शब्द इस गीत में था। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, आवाज मोहम्मद रफी की और सूरज फिल्म से ये गीत है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मेरा महबूब आया है। जी हाँ, तो जैसे हमारी कहानी चल रही है ज्योति और दीपक की, तो अब ज्योति का दीपक उसके सामने आ गया है। और इसी के साथ हमारी एक साथी ने लिखा है कि बहारों फूल बरसाओ, ज्योति का दीपक आया है, हवाओं रागिनी संभल कर गाना, क्योंकि ज्योति का दीपक आया है। और हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इसी के साथ सुनवाते हैं आपको गायत्री महिमा इस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। भरत व्यास के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है। सुरीला सफर कार्यक्रम अब हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर संपन्न करना होगा। इस गीत को फिर कभी पूरा सुनवाया जाएगा, फिलहाल आप इसका सिर्फ मुखड़ा सुन पाए हैं। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिए अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आँखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आँखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं। कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है। नेत्रदान का महत्व अनमोल है। ये दान दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आंख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा। उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं, तो यह कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है, जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम रहती है। ये परोपकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब

0: 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
2: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
3: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
4: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से

0: सुरक्षित हो। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही सी डॉट प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
1: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
2: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
3: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
2: We want to create global standard air cargo facilities across the country.
1: एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
4: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर

0: अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेकिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध

0: और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

0: अभी आपने सुना चश्मे व दूर फिल्म का गीत, शैलेंद्र आनंद कुमार और ए हरिहरन की आवाजें थी। इंदु जैन ने इसे लिखा था, राजकमल का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, जमीन के तारे। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और एस मोइंदर का संगीत। और इस गीत के साथ ही नेहा अगरकर देसाई को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अंदर मेरा करता है कि देखो रॉक एंड रोल, नए जमाने की इसको भी लगी ये

0: Haley.
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और आरती आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हालचाल?
2: बिल्कुल ठीक।
1: मजे में है?
2: बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
1: जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती है।
2: बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार।
1: और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में।
2: बिल्कुल। और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं।
1: नेकी और पूछ।
2: तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सोनाली,
1: यानी हर घर का यही हाल होता है ना?
2: बिल्कुल,
1: यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे ये प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी।
2: बिल्कुल यही होता है सोनाली, सच बताऊं अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है।
1: घर में का कोई एक सदस्य कह देता कि अरे रुको रुको फेंको मत, इतना मत। पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है,
2: इन्हें तो हम खास तौर पे संभाल के रखते हैं।
1: हाँ, अरे नहीं नहीं फेंकना मत, कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमको कुछ भर के देना होगा, अगर हमें तो उसमें हम भर के देंगे। तो ऐसे ही हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
2: जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह,
1: या फिर वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं।
2: बिल्कुल। और हम साथ में लेकर आए सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता।

0: नमलई जो कि सह संस्थापक हैं एमपीआर व्हीकल्स की, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं।
1: और हल्की फुल्की बातें, इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी।
0: अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना
1: कि मजेदार।
0: हाँ, सखा हमारे बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे वो बताएं अपने अनुभव की वो कैसे, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है या फिर कुछ हो जाते हैं।
1: पहले तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए, या फिर करेले सपने खाते तो भी 1 किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर पत्नी जी को यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता है यार इन्हें फालतू ही कह दिया सब्जी तो लाने के लिए।
0: बिल्कुल, फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सही से रख भी नहीं सकते,
1: फेंक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल, तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर सके।
1: वो चटपटे अनुभव होंगे, चुटीले अनुभव होंगे तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी हंसेंगे उन अनुभवों को पढ़ के।
0: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की। तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली, वो है घाव पर नमक छिड़कना।
1: बहुत अक्सर होता है, बहुत लोगों में कि ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है तो जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ। पता होता है कि उसे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
0: या
1: क्या?
0: आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। जी, तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से।
1: सुनते हैं गीत।

0: किसकी घर चोरी करने जा रही है छोटी? हाँ वैसे घरों में चोरी नहीं करते हम, दिलों की चोरी करते हैं।
1: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना।
0: बिल्कुल। और तो आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी समझ लीजिए, सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं,
1: प्रेरणादायी।
0: बिल्कुल, जिन्होंने जो प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की, जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं।
1: तो आज हेमलता अन्नामलाई जो सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
0: बिल्कुल। उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
1: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
0: बिल्कुल। और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई, बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
1: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
0: जी। और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे। और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए।
1: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा बचत, रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था।
0: बिल्कुल। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ

0: विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीक को स्वीकार करवाना।
1: और खास बात तो ये थी कि हिमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: बिल्कुल, अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांग जन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
1: क्या बात है। और इसके अलावा एमपीएन ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी में लगभग 40% महिलाएं काम करती है। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन एसटीईएम प्रकाशन में उन्हें एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
0: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि तकनीक, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
1: और अब लेते हैं ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है.
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना.
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ.
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना.
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही मैं हंसकर लोटपोट हो गई. एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीददारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देखकर परखकर लेके आना, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है. जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा. टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना. साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना वो दे देते हैं. वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं तो ऐसा करके फ्री में नहीं लाता.
1: बहुत अच्छी बात. सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ. तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं मैसेज. वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर पत्नी हो या माँ हो उसका मुआयना करती है. सजा की शुरुआत कैसे होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं. अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था, उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है.
0: और एक साथ ही कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई लाकर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है. मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है. अब मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है.
1: बिल्कुल सही बात कही. और एक और मैं श्रुतन जो लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है पूरी सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं, जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती हैं. उसी समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है, पर साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं. ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है, और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ और ही बनाना पड़ा है. यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं, तो कुछ और ही बनाना पड़ा हल्की फुल्की बातों में. पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने इसी चीज को लिखा है वापस.
0: एक साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही
1: नहीं नहीं आप पढ़िए.
0: एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है, तो कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में

0: चलना। वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी, और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं। मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं, यानी देखिए दोनों दोनों मिलके जाते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी, लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं, भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोकझोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है।
0: क्या बात है। और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी, आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है। साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नाप तोल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना, आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूँ, ताकि सब्जी और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं। खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ।
1: अच्छा। और साथ ही एक और श्रोता जो लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है। ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं, लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है। कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता, लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं, वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं।
0: एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी, और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है। बिल्कुल होता है घर घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं, और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता एक किलो करेला उठा रहा है, या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए, तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर अब हमें गीत सुनना है।
1: बिल्कुल गीत सुनना है।

0: तो आप किनका किनकी बात लेने जा रही हो? सोनाली,
1: आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: तो हम एक श्रोताएं जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं सब्जी। और एक और श्रोताएं जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरे इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए कार्यक्रम में वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर बहुतेरे मोल भाव हुआ कर फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथ ही कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दो संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर के और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी अच्छी बात है,
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है, जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से सब्जी मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते। मनपसंद चीज न मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई ये चीज नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना?
1: बिल्कुल,
0: डाइट खाने से अच्छा ऑप्शन है,
1: पहले बात कर लीजिए आप।
0: एक साथी कहते हैं कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ।
1: अच्छा, बिल्कुल। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज पुरुष भी पूरे उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है। कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देखकर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
0: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर

0: बहुत क्रिटिसाइज करती है, तू रानी है ना वो
1: इसीलिए
0: और वैसे भी कहा है ना कि निंदक मेरे राखी है, तो भाई ऐसे क्रिटिसाइज होते
1: दिरे
0: होते
1: दिरे
0: होते बहुत अच्छी सब्जी लेकर आने लगेंगे आप,
1: बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे और अब हम अपने अगले विषय पे आ जाए जो है घर को हम पुराने सामान का गोदाम ना बनाए।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं घर या पुराने सामानों का गोदाम विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतनी ज्यादा पुराने सामान जमा कर लेते हैं लेकिन हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी जरूरत का नहीं है तो उसे किसी जरूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा, घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज्यादा पुराना हो गया है तो आपके काम का नहीं है तो आप इसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकलिंग करवा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है। यह विषय हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों और सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम।
0: क्या बात है। एक साथी कहते इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने के नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है इन्होंने।
1: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से जो चीजें होती है वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। ये साइंटिफिक बात भी है क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या हुआ पूरा
0: कॉकरोच हो जाएंगे,
1: बिल्कुल कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
0: जी। एक साथ ही लिखते हैं घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले एक साल से इस्तेमाल में नहीं आई है उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करें।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय हमें बहुत कुछ सिखाता है और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। यानी कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती है लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती है और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है लेकिन हर चीज को बचाकर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि घर घर होता है गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाले कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
1: वाह, इन्होंने तो गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं, इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल बरगद के पेड़ ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं, फेंकने की बजाय आप किसी दूसरी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के लिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं फिर कुछ जमा हो जाता है, पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है,
1: गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो अब हम अपने एक श्रोता है, उनका कमेंट ले लेते हैं, जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीजों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का जो पीतल के जो सामान होते थे उनको हमने अच्छे से रख लिया है, तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बताते हैं कि इस तरह की चीजें उनको रखनी है, ये इस तरीके की चीजें तो आप रख सकते हैं।
1: ये ना बहुत
0: हाँ
1: उससे जुड़ी भावनाएं भी होती
0: हाँ
1: है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो रखना भी चाहिए। और अब तो ऐसा हो रहा है ना चलन कि अब पुराने जमाने की जो चीजें है ना उसका ही महत्व बढ़ गया है, कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे,
0: हाँ
1: बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: ये तो चीजें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन बस आपको जो पुरानी जो इस तरीके की
1: खास
0: चीजें
1: कर
0: हैं,
1: प्लास्टिक की
0: प्लास्टिक
1: थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें,
0: बिल्कुल मत
1: रद्दी
0: रखिए।
1: रद्दी के जो पेपर हैं, उसके
0: हाँ
1: बाद में जो खराब टायर होते हैं उसे
0: हाँ
1: भी हम सहेज कर रखते हैं। होता यूं है कि बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, छत का पानी भर गया और फिर डेंगू मलेरिया होने लगता है,
0: बिल्कुल
1: तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमें सफाई भी इस तरह से करें कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि कबाड़ वाली जगह पर धूल और नमी जमती है, जिससे कई तरह के जीव जंतु सांप बिच्छू भी वहां पर डेरा जमा लेते हैं, लकड़ी के सामान में नमी के चलते फफूंद लग जाती है और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बचपन से हम देखते हैं जैसी बारिश खत्म होगी लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं और दिवाली के पहले पुराने सामानों को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो मतलब आप पुराने कबाड़ को मत रखिए, उसको निकाल दीजिए,
1: यानी दिवाली तक इंतजार मत कीजिए, हर 2 महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा ही अच्छा होगा,
0: घर भी साफ रहता है थोड़ा। जब देखेंगे ना बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना वहां पे थोड़ा सा तनाव सा बना रहता है, आप खुद देखिए अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में उतना ही ज्यादा आपको अच्छी मानसिक शांति और सुकून रहेगा।
1: और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपना समय, बहुत ज्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं कि भी सामान बढ़ा लिया फिर उसको पोछना है, उसको धोना है, उसे साफ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं, और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता और हम इन सभी कामों में उलझे रहते हैं,
0: लगे रह जाते हैं।
1: तो हमें इन सब बातों को
0: बिल्कुल
1: ध्यान देना
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल,

0: नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
1: हाँ ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि जब हम खाली रहते हैं ना तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक लग जाए उसे पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं।
0: बिल्कुल
1: यही ये बात हमारे साथी ने लिख कर भेजी है।
0: अच्छा तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया ना,
1: समझाया।
0: तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताजा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगर शरीर के यही जो आपने जैसे तरह से बताया तो वही बताने वाली बात को किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है इस तरह से करने से, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों को करने से कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना। कहते हैं मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए,
1: बिल्कुल सही,
0: दुखों को नहीं, दुखों को ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए।
1: हाँ तो आप क्या करना है,
0: एक गीत सुन लेते हैं,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सुन सुनाली क्या आप बताने जा रही थी घावों के बारे में।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
0: और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मारक बनाने की क्षमता रखता है।
1: एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो उसके बाद अगर मकान मालिक किराए लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है, कहते हैं कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के

0: दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई इंसान पहले से ही किसी मुसीबत, दर्द या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे, तो इसे ये मुहावरा कहा जाता है।
1: बिल्कुल, अगर कोई दुखी है तो उसके उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और
0: बल्कि मरहम का काम करे अपने शब्दों के माध्यम से। और अब गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो आरती हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और बहुत मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के, और आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा।
1: आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आप
0: विविध भारती सुनते रहिए, और हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जानी मानी अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
3: शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी।
2: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
2: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी,
2: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
2: यस,
1: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ?
2: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना और बहुत सहज थे वो।
1: जी,
2: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
1: बिल्कुल, अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की
2: जी,
1: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
2: हाँ, ऐसे ही हमारा वही खेल वाली उठली, हम भी खेलते थे वो सारी चीजें। गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना और उस
1: मिट्टी में
2: वो वाला खेल तो अच्छा। हम खूब खेले, खो खो, संगीत कुर्सी, ये सारे खेल हम खेलते थे।
1: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उस समय?
2: अरे मार पड़ती थी, डांट किधर पड़ती थी।
1: तो बताइए ना वो एक आध किस्सा, किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
2: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है, तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से और सुबह तक मेरा पैर इतना
1: सूजा था।
2: तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो उन्हें सीधा उस सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ नहीं बोलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इस तरह का
1: नैतिकता बहुत सिखाई जाती थी।
3: माँ बाप दोनों टीचर थे।
1: अच्छा,
2: मेरे
1: कौन से गांव की बात है
2: ये? जलगांव के पास एक गांव है कासोदा, गांव की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी?
2: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी।

0: रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीजों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहां पे मेडिटेशन ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया वो सब कुछ उनको।
1: जी, तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
0: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
1: तो सुनते हैं यही।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लोटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती तत्व किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं हमने सुना है, गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, कमाल
0: जी। आपकी बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है, तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई एक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज है, हाव भाव है, इतने साल हो गए उसकी कुछ आदतें हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल
1: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में, कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
0: जी। क्या
1: अगर वो है? अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए, मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी है, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज्यादातर लोग तो ये विविधताएं जो है करेक्टर्स की, ये स्क्रिप्ट देती है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगाजल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है
0: जी, जी जी।
1: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
0: जी,
1: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
0: जी। वेलकम टू द जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
2: राजपाल
0: देशमुख है आपकी कैसी?
1: हमारी भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी जैसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया, बस हमको खड़े हो जाओ यहाँ पे, ये करना, ये मूव करना, ये बोलना, ये बोलना, हमने बोल दिया बस खत्म।
0: अच्छा,
1: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है, और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है एक्टिंग, बड़ी वेराइटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा

0: मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी, इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला काफी देर तक, परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी है, एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द जंगल।
1: जी, अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित है और जिसमें आपने खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक 56, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी सब इंस्पेक्टर।
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
1: क्या बात है, प्रतिभा जी की फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं, आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप, वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं, और इतनी बार पुलिस की,
0: ये आपने सारी पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम वही आ रहे हैं, हम ये नहीं जानना चाहते कि पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी?
0: तो सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी, लेकिन हाँ अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी, और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया, कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हो और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो नाना पाटेकर ने भी बुद्ध फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, रियली तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब, तो उन्होंने किया। फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
1: तो राम गोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी हुई कोई किस्सा बताइए, बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
0: बहुत ज्यादा किस्से नहीं हैं, अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमी तमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो हमने कुछ जंगलों में जाकर के वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल यू विल बिकम अ वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माय फिल्म आल्सो अगेन, मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म, हिट हो जाए फिल्म, अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे अभी देखा कहाँ बुलाया उन्होंने, एक फाइव स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे, तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज डन,
1: क्या बात है।
0: तो मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं।
1: क्या बात है, अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाए।
0: तुमको कहा था, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है?

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका?
1: इन्होंने मेरा बहुत बार दिल तोड़ा है।
0: बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक है सुनने के लिए।
1: हाँ, 6-6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी।
2: बहुत अगर ये बोल रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई। अरे लेकिन गाना कमाल है।
0: हाँ। नहीं, अच्छा चलिए ये बताइए हमें यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
1: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये नापसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
0: पसंद तो शादी के पहले होता, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति।
1: नहीं नहीं, वो लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सोच नहीं सकती उनके बारे में।
2: अब हम क्या उससे ऊपर उठ चुके हैं। पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए फिर दोबारा से प्यार हो गया।
0: अच्छा,
2: अभी हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
0: एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
2: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
0: अच्छा,
2: कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों को।
1: गई बात गई,
2: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं अभी, हम कितनी उम्र बची है इसमें भी अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
0: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के।
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
1: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, और कोई बात? घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की, इधर उधर?
1: नहीं, ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज।
0: अच्छा,
1: घर में उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत।
1: मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
0: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
2: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं। कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए। कुछ चीजें मतलब मान लो एक कोई फोटो है, वो कैंची से काटे हैं तो उसे कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़े हैं।

0: कैंची वहीं पड़ी है, फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत बेकार।
1: सच बोल रहे प्रतिभा जी, चलिए मान लेते हैं। बताइए अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
2: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
1: नहीं नहीं आपको अपने से बताना है।
0: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ,
2: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है।
1: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद का रंग।
0: इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था एलएसडी में, वो जो उसमें लगते थे ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई।
1: ओहो क्या बात,
0: वो ड्रेस में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो राजस्थान के या किसी फोक देसी टाइप के, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी।
1: क्या बात,
0: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी, ऐसे घुमा फिरा करके काली सी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो टीवी नहीं है, रेडियो है, कहते नहीं रेडियो में कैसे दिखेगे, पर लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ,
1: श्रोता सुन रहे हैं।
0: तो वो वाली ड्रेस जो उसका मेरा फेवरेट कलर तो जो इस पे फबता है वही है कोका कोला कलर का।
1: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो एनएसडी वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में।
2: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है, कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
1: आप गांठ रख लेती है मन में।
2: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
1: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी।
0: अरे बेकार में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है, मैं तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, वो हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए
1: देखिए यहाँ
0: सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
1: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई 5 पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए, तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे 5 या 6?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
1: और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना।
0: अब तक 56 इज माई फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगा जल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर, श्याम बेनेगल की।
1: जी जी,
0: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में हैं। और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी
1: जी,
0: जो कि आई थिंक इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
2: उसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया,
0: प्रतिभा ने भी एक रोल किया, बहुत ही बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको, कांस में भी मैंने बताया था नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट 2 बनाना है अभी, बाकी है, अभी पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है
1: जी,
0: 5 साल लगे बनाने में।
1: क्या बात है,
0: लेकिन बनाई, अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ
1: जी। आपने डायरेक्ट भी की है?
0: जी डायरेक्ट भी मैंने की है, को प्रोड्यूस भी की है।
1: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
2: मुझसे आया था
1: जी,
0: ये तो खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है, वो एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट नाना पाटेकर की
1: जी,
0: उसमें कहानी थी, एक्टर की कहानी थी जो कि बहुत ही सच्चा होता है, और वो अपने बच्चों को
2: फेमस प्ले है मराठी का नट सम्राट।
0: हाँ, तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था, फिर सतरंगी जो मैंने मेन रोल किया था उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त, मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म।

0: तो हमने फिर पता किया कि कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है
1: जी जी,
0: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पे काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनकी कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी। तो फिर हमने उस पे फिल्म बनाना शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है, गाने भी बहुत है। तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया
1: जी,
0: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहां तक मैं नहीं हूं मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद
1: जी,
0: जहां मैं नहीं हूं वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊंगा मेन उसमें अभी आना है।
1: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा?
0: दूसरा भाग बनेगा, अभी थोड़ा सा बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं।
1: जी जी, तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।

0: रावड़ी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ की पुलिस शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार, उसको पता चलती है, तो फिर वो जाकर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मजेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर, और ये लोकेशन बहुत कमाल।

0: थी, इसलिए वो वहां पर शूटिंग की गई थी, तो वहां गए थे शूट करने। अच्छा रहा।
1: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए, आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं।
0: जी हाँ, प्रतिभा उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है, और हम हर साल करते हैं, पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी, तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और एआई फिल्में भी इस बार ऐड किया है, तो इस तरीके स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं, तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं टोटल, जिसको हम देख करके सिलेक्ट करते हैं उसमें से तकरीबन 100 के आसपास, फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को, जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म्स का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं और वो फिर रिजल्ट देते हैं, फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है, तो वेदा कुंभा में बॉम्बे में हर दिसंबर को हर साल तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म, तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
1: जी जी, बात अनुभव जी की चलिए, अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पे साझा करेंगे आप?
0: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे है, आईसी, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था हवाई जहाज,
1: जी जी जी जी,
0: हाँ उसमें मैंने काम किया था, एक छोटा सा, बढ़िया, अच्छा रोल था, छोटा जी, था, एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है,
1: जी,
0: तो जी, उसका जी, रोल था मेरा,
1: बिल्कुल,
0: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया, मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, 2 या 3 सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया है, ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन, तो मैंने कहा चलो, तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूँ, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं,
1: जी, जी,
0: और बड़ा अच्छा वो करते हैं, तो इसलिए प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं, तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने, और ओपनिंग फिल्म, और
1: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़,
0: जी जी, तो उसमें फिर हम मिले थे।
1: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए, यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया है, और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है,
2: हाँ,
1: तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इतनी सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक एक मुखिया की तरह करना?
2: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म आमो आंखा एक से, ये मैंने काफी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहां था, और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं, और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था, उस प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
1: क्या बात है,
2: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी, और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी, वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ ये बात मुझे काफी 2-4 लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है, तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं करते हैं, शुरू किया हमने, और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड, पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया, और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में,
1: जी,
2: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वैसे भी फिल्में आ रही थी, और पहले ईयर में हमें 250

0: में मिली
1: जी जी,
0: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
2: लॉकडाउन था
1: जी,
0: लॉकडाउन था और कहीं आप कर नहीं सकते थे। ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था, पहले 2 साल हमने ऑनलाइन किया, तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पांस ऑनलाइन में भी रहा।
1: और अब वेदा कुनवा में
0: ऑफ कोर्स अब तो फिजिकली करते ही
1: तो बहुत बढ़िया है। और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल हो सकते हैं,
0: होना ही चाहिए।
1: प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है जिसमें यशपाल जी भी,
0: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर है।
1: अच्छा, वो प्रोड्यूसर है तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
0: नहीं नहीं, कभी नहीं मिला। हालांकि वो चाहते हैं, कभी मुझे बोलने भी थे, तुम मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना
1: कोई रोल दे दो हमें भी ऐसा बोला तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों का नाम बताइए।
0: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है
1: जी,
0: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है, है ना, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट, मतलब फिल्म है वो, नो एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: हाँ, तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक।
1: अब एक गाना सुनते हैं फिर थोड़ी सी बातें और करते हैं
0: जी।
1: एक गाना बताइए, कौन सा सुनवाए?
0: कुहू कुहू बोले।

0: पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनकी क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी?
1: उन्होंने तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान तो ऑफ कोर्स मेरी बहुत ज्यादा

0: कुछ फिल्मों के नाम
1: है और अब तक 56 और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इसकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: हाँ,
0: और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि अरे ये एक्टिंग।
1: हाँ, मैं बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली लेते हैं वो मेरी चीजों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी जी। और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान प्रदान?
1: हाँ, मुझे तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का।
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देते हैं, सिखा देते हैं ना कुछ।
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब।
0: हाँ।
2: मैंने समझने की कोशिश बहुत की, क्योंकि मैं ससुराल में जाता था सब मराठी बोलते थे।
0: हाँ।
2: इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी।

0: है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का.
1: कौन सा?
0: माझे बायको मराठिया है.
1: दो चार वाक्य सुना देते हैं, सिखा देते हैं ना कुछ.
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब. मैंने समझने की कोशिश बहुत की, क्योंकि मैं ससुराल में जाता था सब मराठी बोलते थे. इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी. फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे. इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे. तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दे. हुआ क्या कि ये एनएसडी में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलती थी, माझा शेमड़ा, माझा गाढ़ा, माझा पता नहीं क्या क्या बोलती थी. तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ा का मतलब क्या होता है. बोले गाढ़ा का मतलब गधा और शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है. मामला तेरा भला हो जाए. अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा. एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ा, और मतलब मीनिंग कुछ और. फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो समझना बहुत जरूरी है.
1: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला?
0: मैं तो सब समझती हूँ.
2: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना. हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ही प्यार से बस. बाकी मुझे कुछ क्या बोलते, नॉन रोमांटिक बिल्कुल, ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ. मैं बिल्कुल अखड़ आदमी हूँ बिल्कुल. मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली. कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा. हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पर लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए. और मैं सोचू यार मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई. तो इसलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था. लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है, अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है. रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है. जिंदगी में मैंने तो देख लिया, अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है.
1: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात कही.
2: और पति पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं. मैंने वो सीख लिया है. तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना मन मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं. बिल्कुल
1: जी ऐसा
2: कभी कुछ होता नहीं
1: कि आपकी गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती.
0: नहीं नहीं इतने भी शरीफ नहीं है.
1: ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है. नहीं तो पता चलता है कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते हैं और फिर हम भ्रम में रह जाते हैं. तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए, आप दोनों साथ में गाए एक दूसरे के लिए. कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा, जाहिर सी बात है.
2: हाँ। तो ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध मट्ठा दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा जब देसी कढ़ी चावल हो गया या वहाँ का राजमा चावल हो गया या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रेपेट्री में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेट्री में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
0: क्या बात है।
1: और हमारा ही खाना हमारा ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा देख खा जाते थे।
0: तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
1: हाँ बिल्कुल बनाना आता है।
0: बना के खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
1: हाँ बिल्कुल, कई बार खिलाया है।
0: सच है प्रतिभा जी? अच्छा,
2: खिलाते हैं
0: जी जी। तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की, आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे श्रोता।
1: नहीं नहीं, बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीजों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए, मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े, और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे, तो इकट्ठा कर करके हमने तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए और साइकिल,
0: अरे वाह क्या बात है,
1: आनी थी उस दिन, और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा और अंदर बाहर कभी उधर थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाए, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते हरे की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही लिख लिया था क्योंकि एक टैक्सी वाले से बात की थी, तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम, तो उस घनश्याम को हमने भेजा और उसके मोबाइल पे हमने फोटो मांगी कि हमको फोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे

0: एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू एक चीज, पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
1: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
0: हम तो
1: एक खिलौना बहुत कीमती हुआ करता था।
0: हम तो 20-20 पैसे, 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों। आज तो लाखों रुपया भी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
1: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो है एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
0: मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हम दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूं, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूं, देखो मैं रो रहा हूं, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता। जैसे हनुमान के अंदर थे, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते। तो वो चीजें आपके अंदर है, आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती है और हम यूज ही नहीं करते उसका। कुछ इनहिबिशन होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खासकर, कि हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार।
1: जी बिल्कुल।
0: तो मुझे लगता है कि वो चीजें आपको करनी चाहिए और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर।
1: जी बिल्कुल,
0: करो मत, हो जाओ।
1: बिल्कुल। प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया, जिसे पूरा करना चाहती हैं। महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की?
2: मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है, तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल।
2: हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग। बस यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
0: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
1: क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
2: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जानी मानी अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
4: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, शाम की 5 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। यह प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से

0: है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी यात्रा केवल लोगों को जोड़ने से परिभाषित नहीं होगी, बल्कि विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीले नेटवर्क सुनिश्चित करने से भी परिभाषित होगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के 43वें स्थापना दिवस पर देश के दूरसंचार परिवर्तन में सी डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश के में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इनका इस्तेमाल सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन इंटरसेप्टर और छोटे मिसाइल सिस्टम में किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जाएंगे। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, 5:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप फिल्म संगीत सुनेंगे।

0: 1467 पर और बाइल से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
3: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मैंने प्यार किया फिल्म से ये गीत।

आपने मैंने प्यार किया फिल्म से ये गीत सुना श्रोताओं, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत हमने कटी पतंग फिल्म से चुना है, आवाज़ किशोर कुमार की।

विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं कुछ फिल्मी गीत।

आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को गाया है गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में

0: अच्छी सफलता पाता है।
1: तो आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंडा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
0: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं, उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
0: जी,
1: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
0: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
1: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
0: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
1: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
0: जी।
1: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
0: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
1: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
0: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
0: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांग नागा जनजाति निवास करती है। कोयांग समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
1: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांग पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे।
0: जी।
1: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
0: कोयांग जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
1: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांग योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
0: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांग समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
1: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव

0: का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
1: जी।
0: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
1: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओं, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
0: जी, तो श्रोताओं, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं, लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
0: तो श्रोताओं, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यही समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
1: सरितपुर की कहानी।
2: अरे भागो भागो, वो देखो
3: हमारे आगे बच्चों का क्या हो रहा है, हमारे घर के सारे सामान बह गए
2: हैं। अरे क्या हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
4: फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
6: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
4: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए

0: खेत। हाँ हाँ हाँ।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी, आहा हा, कितना साफ पानी है।
2: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे काट काट काट, अरे मेरा भी क्या देख रहा काट।
4: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
2: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
5: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
2: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
3: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
6: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
7: और पैसे कमाने हैं।
2: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
6: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
8: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
9: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
2: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
10: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
11: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
8: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
11: फसल बह गई।
10: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
11: जल्दी
10: ऊपर ले जाना होगा।
11: चलो जल्दी ऊपर,
10: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
11: चलो चलो,
10: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
11: ध्यान से संभल कर।
2: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने

0: पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हां साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
1: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो।

0: लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
1: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
2: अभी आप सुने थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
3: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा है जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो है पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी टेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरी जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसे चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें एक शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
0: जब मुकाबला हुआ तो सब

0: आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
1: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
0: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
1: वर्ष था 1977 का, जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
0: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
2: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
3: थैंक यू सर।
2: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
3: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
2: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
3: आप? धन्यवाद सर, लेकिन...
2: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
3: सर।
2: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
3: थैंक यू सो मच सर।
1: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारे जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
4: आज तो बड़ा मजा आ जाएगा दौड़ देखने में।
3: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही
4: है।
3: हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। अरे उषा, ये क्या हुआ?
1: उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रति

0: के द्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
1: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गई। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
0: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
1: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गांव में हुआ था। पयोली गांव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
0: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
1: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
0: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
1: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
0: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम दत्ता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਹਨ ਸੁਣੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल

0: भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: या पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है।

0: जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉग इन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: हे चंडीगढ़, मैं विवेक ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच। अगर आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह, कहानी, ट्रेडिशन या टैलेंट है जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस माई वेव्स पर लॉग इन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो को 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम्स।

0: 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया। हरियाणा के कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती को सबसे बेहतर बताया। महिला के ऑपरेशन की लापरवाही के मामले में चिकित्सक बोर्ड गठित कर जांच के आदेश दिए। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कुरुक्षेत्र में रोडवेज महाप्रबंधक को धनौरा जाटान मार्ग पर विद्यार्थियों के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक बस चलाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में देशभर के युवाओं से संवाद करेंगे।

0: और हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की महिलाओं को हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को माल के बंदरगाह पर पहुंचने से पहले या उस समय सीमा शुल्क विभाग को दिए गए घोषणा पत्र बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम 2 महीने का समय मिलेगा, जिसके भीतर उन्हें कच्ची चीनी को रिफाइंड चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में अधिसूचित उन नियमों में संशोधन किया है जिनके अंतर्गत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। इससे पहले इस योजना के तहत आयात की गई कच्ची चीनी को 31 अक्टूबर तक रिफाइंड चीनी में प्रसंस्कृत कर घरेलू बाजार में बेचना जरूरी था। इसके अतिरिक्त सरकार ने 20 अगस्त को घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेज वृद्धि के बीच आगामी त्योहारी सीजन से पहले इस योजना के तहत 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी। ताजा संशोधन में 20 अगस्त की अधिसूचना में दिए गए अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने यह फैसला अगस्त से नवंबर के बीच आने वाले त्योहारी सीजन से पहले घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर दबाव कम करने के प्रयासों के तहत किया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्राकृतिक खेती पर बल दिया है। आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि रासायनिक, जैविक और प्राकृतिक खेती में से प्राकृतिक खेती सबसे महत्वपूर्ण है।
1: एक तो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती जो खाद से, दवाई से होती है, उससे जरूर मापा आता है खेत में, सलाद में आ जाता है, फिर कम से जैसी बीमारियां फैलती है। दूसरी खेती है जैविक खेती, तो कंटिन्यू से गोबर के खाद से एक लंबा प्रोसेस है, बहुत खाद की जरूरत पड़ती है। एक प्रकृतिक खेती, प्रकृतिक खेती देसी गाय से करती है, उसमें 1 ग्राम में 300 करोड़ बैक्टेरिया होते हैं, जो जीवाणु है खेत के अंदर, रसोइये का काम करते हैं, वो नाइट्रोजन लेकर पौधे को देते हैं।
0: गन्ने की अदायगी को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीनी मिल नहीं है जिसमें किसानों की अदायगी बकाया हो। कैथल चीनी मिल में भी किसानों का एक भी पैसा बकाया नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी चीनी मिल घाटे में नहीं चल रही है। आज की बैठक को लेकर उन्होंने बताया कि कुल 13 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिनमें से 9 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि एक महिला के ऑपरेशन में लापरवाही की शिकायत पर चिकित्सकों का बोर्ड गठित करके जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक बिजली चोरी के कथित फर्जी मामले में समिति गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने कुरुक्षेत्र में रोडवेज महाप्रबंधक को धनौरा जाटान मार्ग पर विद्यार्थियों के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक बस चलाने के निर्देश दिए हैं। कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक में उन्होंने ये आदेश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया,
2: जैसे गांव वालों ने डिमांड की थी कि बस गांव में होकर के तब मेन रोड पे आए, तो 700 मीटर दूर था, कोई बस में कंडक्टर जाने वाला कोई पेशेंट भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई जाने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन बच्चों भी शिकायत में जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक बस पे आदेश दिए वो चालू की जाए।
0: उन्होंने बताया कि आज 11 शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने सलेमपुर के रकबा में भूमि खरीद के दौरान धोखाधड़ी की शिकायत पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत के तत्वाधान में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से देशभर के युवाओं से संवाद करेंगे और खेल तथा विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे। फतेहाबाद में माय भारत की जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि फतेहाबाद जिले में भोड़िया खेड़ा के चौधरी मणिराम गोदारा राजकीय महाविद्यालय तथा फतेहाबाद के एमएम कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने बताया,
3: 27 तारीख को पीएम मोदी जी का जो वर्चुअल संवाद रहेगा, जिसको हम खेलो संवाद के नाम से जानेंगे, होना है। हर साल हम 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी हैं, जो हमारे हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं,

0: जयंती के उपलक्ष में ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष हम इस कार्यक्रम को 27 तारीख को भी आयोजित करेंगे, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स डे को हम यूथ पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग के साथ जोड़ के इसका शुभारंभ करेंगे खेलो इंडिया संवाद से।
1: उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेल, युवा नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है।
0: ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य ये है कि पिछले 12 साल में हमारे जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी डेवलपमेंट हुई है, हम कैसे अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज को, जो टैलेंट है उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसके बारे में मंथन किया जाएगा, एक यूथ इंटरेक्शन किया जाएगा जिसमें युवा अपने विचार भी साझा करेंगे, जो स्पोर्ट्स पर्सन वहां पे प्रेजेंट होंगे उनसे उनके आइडियाज पूछेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे कैसे वो यहां तक पहुंचे, किस स्ट्रगल से उन्होंने ये सब हासिल किया। तो कह सकते हैं काफी विस्तृत चर्चा है उस दिन आयोजित होगी।
1: हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज फरीदाबाद के तिगांव स्थित सरकारी गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने गोदाम में खाद्यान्न के भंडारण, साफ सफाई, रखरखाव और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने गोदाम परिसर में गंदगी और अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया,
2: गाँव में जो गोडाउन है उसमें आज निरीक्षण किया गया, कुछ कमियां थी जो सफाई की उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है ये उसमें कार्रवाई की जाएगी, और बाकी मॉइस्चर की वजह से कुछ जो यहाँ पर छोटे कीड़े घूम रहे हैं, बाकी सभी बोरिया और जो स्टॉक है ठीक मिला।
1: हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की महिलाओं को हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि निशुल्क यात्रा की सुविधा 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जो 28 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी। महिलाओं के साथ उनके 15 वर्ष तक आयु के बच्चे भी हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में बिना किराया दिए यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। ये सुविधा दिल्ली और चंडीगढ़ सहित हरियाणा में किसी भी स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए मान्य होगी। संबंधित अधिकारियों तथा सभी जिला महाप्रबंधकों को बस अड्डे पर वर्दी में परिवहन कर्मचारी और पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मचारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अंबाला छावनी बस अड्डे के प्रभारी निरीक्षक बहादुर सिंह ने बताया,
3: हरियाणा रोडवेज अम्बाला में 131 बसें अम्बाला डिपो में है और लगभग 35 बसें नारायणगढ़ में है, कुल मिलाकर 166 बसों का डेरा इस दौरान चलाया जाएगा। सभी कर्मचारी ड्यूटियों पर मौजूद रहेंगे। छुट्टियां 2-3 दिन के लिए कैंसिल की गई है ताकि यात्रियों को हर संभव सुविधा दी जा सके।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया। हरियाणा के कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती को सबसे बेहतर बताया। महिला के ऑपरेशन की लापरवाही के मामले में चिकित्सक बोर्ड गठित कर जांच के आदेश दिए। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने कुरुक्षेत्र में रोडवेज महाप्रबंधक को धनौरा जाटान मार्ग पर विद्यार्थियों के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक बस चलाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में देशभर के युवाओं से संवाद करेंगे। और हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की महिलाओं को हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हम तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस

0: ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
2: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
0: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं 107.2 मेगाहर्ट्ज से। अगला प्रोग्राम जयमाला। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म से आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और ए आर रहमान की, बोल जमीर की और तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने।

फौजी साथियों लीजिए अब सुने अमित कुमार और साथियों की आवाजों में तेजाब फिल्म का गाना। जावेद अख्तर ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीले धड़कन से भी आप सुने कार्यक्रम जयमाला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में रंग फिल्म का गाना। इसे लिखा है समीर और सुरेंद्र साथी ने, नदीम श्रवण ने तर्ज बनाई है।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
2: इसके अलावा वेव्स ओटीटी इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: फौजी साथियों लीजिए अब सुने अनुराधा पौडवाल की आवाज में दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गाना समीर ने लिखा इसे और संगीत बद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सूर्य विधान कन्नौर कार्यक्रम चल रहा है जय माला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में दिल फिल्म का गाना। समीर ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद।

फौजी साथियों, इस गाने के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए, जय हिंद।

0: हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री अनिसेट्टी सुब्बा राव की मूल नाटिका का हिंदी रूपांतर जीवन भय।
1: सरू सरू
2: क्या बात है, कहीं बोनस इनकार तो नहीं किया?
1: नहीं, नहीं, वो बात नहीं। वो पैसा तो एक घंटे के अंदर हमारे हाथ में आ जाएगा। 200 नहीं, पूरे 500 दे रहे हैं।
2: 500? अभी अभी मेरे पिताजी का भी खाता है, लिखा है
1: त्योहार के अवसर पर अपने यहाँ बना होगा। मैं भी ठीक यही सोच रहा था। क्यों, हम भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, जरूर चलें।
2: पर इस हालत में मैं कैसे जाऊं? चढ़ाऊ हाल तो भी गिरवी रखा हुआ है।
1: तभी तो मैंने ये योजना बनाई है। जरा इत्मीनान से सुन लो मेरी बात। अभी अभी मैं दफ्तर जाकर बोनस का पैसा लेता आऊंगा। अगर वो रकम नागराज को चुका दें तो तुम्हारा हीरो का हार तुम्हारे गले में आ जाएगा और त्योहार का दिन बड़े धूमधाम से कटेगा।
2: नहीं कटेगा।
1: क्यों नहीं कटेगा?
2: आपकी योजना को उलट दिया है।
1: किसने?
2: मेरे पिताजी ने।
1: वो कैसे?
2: बस ऐसे ही चिट्ठी जो आई है।
1: क्या लिखा है?
2: लिखते हैं त्योहार के दूसरे दिन मुझे वहाँ मुकदमे का काम है, इसलिए मैं इस वर्ष त्योहार तुम्हारे यहाँ ही मनाऊंगा। इसी ख्याल से मैं आज यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, तुम्हारा हित चिंतक।
1: हित चिंतक? तुम्हारे पिता हमारे हित चिंतक होते तो हमारी योजना यूं नहीं बिगाड़ते, ऐसे बुजुर्ग।
2: बस बस बस कुछ न कहिए। एक नहीं दो मेहमान आ रहे हैं।
1: है? वो दूसरे कौन है?
2: उनके वकील।
1: वकील? बस बस बस बहुत हो चुका है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता।
2: वाह, कोई सुन ले तो समझेगा कि दिमाग खराब है।
1: अब तो सचमुच ही मेरा दिमाग खराब हो गया है। शादी क्या हुई कि नौकरी का भार और घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व सब सिर पर आ पड़ा और दिमाग भी खराब हो गया। नागराज धमकियां दे रहा था कि अगर मैं रुपया अदा नहीं करूं तो गिरवी रखा हुआ उजाड़ बेच देगा। इधर तुम इस बात पर अड़ी हो कि अगर मैं वो हार नहीं लाऊं तो तुम अपने पिताजी से कहकर मेरी इज्जत पर बट्टा लगाओगी। सारी दुनिया मुझे हिरण की तरह खदेड़ रही है, इसीलिए मुझे अपनी पत्नी से डर है, बंधु मित्रों से डर है। आखिर जिंदगी से भी मुझे डर महसूस होने लगा है सरू, पूरा जीवन भय।
2: आपको देखकर मुझे भी डर लगने लगा।

0: रो मत सरू, रो मत। तुम रोगी तो मुझे और डर लगेगा। सरू, हमारे सुखी रहने का एक ही रास्ता है।
1: क्या?
0: मेरी बात सुनो तो।
1: मैंने आपकी बात कब नहीं सुनी।
0: तो चलो यहाँ से चले।
1: कहाँ?
0: उस दोस्त के यहाँ।
1: पर मेरे पिताजी।
0: बताओ, तुम्हें अपने पिताजी चाहिए या हीरो का हार? अगर पिताजी वापस भी चले जाते हैं तो फिर से पत्र लेने से चले आ सकते हैं, पर हीरो का हार अगर हाथ से निकल गया तो बस गया ही समझो।
1: हाँ, तो चलिए चलिए।
0: बस जल्दी तैयार हो जाओ।
1: बस 10 मिनटों में तैयार हो आती हूँ, देखते रहना।
2: शंकर, ओ शंकर।
0: अरे बाप रे, वो आ गए। हाय रे भगवान।
2: शंकर,
0: सुनो, आ गए तुम्हारे पिताजी। आ गए, चल जल्दी।
1: अभी आई
0: सरू,
1: जल्दी साथी हो।
0: तुम्हारे पिताजी आ गए, हमें जल्दी चलना चाहिए।
2: बेटी,
1: क्या होगा?
2: ओ बेटी सरोजा।
0: सरू, सरू,
1: सरू,
0: चलो चलो चलो, इधर से नहीं।
1: कहाँ से चलेंगे? पर
0: पिछवाड़े से निकल चले, पिछवाड़े से। चलो चलो चलो चलो।
2: अरे तुम लोग जा कहाँ रहे हो?
1: आप है पिताजी? आइए।
0: नमस्ते।
3: नमस्ते ससुर जी।
2: ये कहाँ की तैयारी है? बोलो।
1: पिताजी कहिए ना।
0: वो पिताजी और कहाँ, आप ही की आप मदद करने के लिए वो निकले हैं। सोचा आप एक्सप्रेस से आएंगे, इसलिए स्टेशन पर आपसे मिलने होंगे।
2: अच्छा, ये बात है। सुना वकील साहब,
4: जी
2: मैंने जो कुछ आपसे कहा उसका सबूत मिल गया ना शंकर
0: जी?
2: रास्ते भर मैं वकील साहब से यही कहता आ रहा था, हमारे दामाद जी ओहदे में जितने बड़े हैं उतने गुणों में भी।
0: ये तो कुछ नहीं। वो आइए वकील साहब, आइए,
1: तशरीफ
0: लाइए। आप भी बैठिए ना ससुर जी।
2: शंकर, कहीं देर न हो जाए, किसी को बैंक भेजकर कुछ रुपए मंगा लेना।
0: लाइए, चेक दीजिए, अभी मंगा देता हूँ।
2: चेक? कैसे चेक?
0: तो फिर रुपया कहाँ से आएगा?
2: तुम्हारा अकाउंट तो होगा ही।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, पर उसमें वो पैसा। हाँ, वो पैसा।
2: देखा वकील साहब, इनका जितना बड़ा रोब दाब है उतना ही बड़ा बचत का भी ख्याल है। कोई बात नहीं शंकर, मंगा लेना।
0: बात वो नहीं जी, वो ज्यादा रकम निकालेंगे तो बैंक वाले उधम मचाएंगे।
2: अरे, जब पैसा हमारा है तो वे लोग उधम क्यों मचाएंगे? सिर्फ 500 रुपए काफी है।
0: सरू, काफी लाई नहीं, अंदर हुआ था मैं जरा।
4: देखिए शंकर जी, रुपया जरा जल्दी मंगाइएगा, कल बैंक की छुट्टी है।
0: जी साहब, आपके लिए बैंक में रुपया तैयार है।
2: ये के शंकर कहाँ जा रहे हो?
0: जी सरू से बात करनी है। सरू, मैं जा रहा हूँ परसों रात तक, यानी उनके यहाँ से चले जाने तक मैं अपने दोस्त के यहाँ रहूंगा।
1: हाँ तो ठीक है, पर मैं उनकी खातिरदारी करूँ कैसे?
0: हाँ, इसमें कोई कमी ना होने पावे, भगवान आगे बनाना।
1: पर कैसे, पैसे तो नहीं है हाथ में।
0: तुम्हारे पिताजी के पास होंगे ना, मांग लेना।
1: आपके दोस्त आपको कपड़े देंगे ना?
0: क्यों नहीं,
1: वे कपड़े यहाँ भेज दीजिएगा, अपने पिताजी को मैं दे दूंगी।
0: अच्छा, बहुत खूब। सर देखो, ये मेरे लिए जीने मरने का सवाल है, समझी? त्योहार के पहले कईयों के कर्ज मुझे चुकाने हैं, अगर मैं घर में रहूं तो वो लोग मुझे घेर लेंगे और फिर हमारी पोल खुल जाएगी। और देखो, तुम्हारे हीरो के हार के लिए दफ्तर से पैसा भी लेना है ना?
1: हाँ, लेना ही तो है।
0: अच्छा, चलता हूँ।
2: शंकर, ओ शंकर।
0: अरे बाप रे, ससुर साहब तो रसोई घर में घुसे आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ।
2: बेटी, इतनी जल्दी ये कहाँ जा रहे हैं? सवाल का जवाब तक नहीं दिया।
1: मुझे पता नहीं पिताजी,
2: शायद बैंक गया होगा।
1: शायद गए होंगे। ये लीजिए पिताजी, कॉफी। पिताजी, चपरासी का लाया हुआ पैसा आपने ले लिया, शायद उन्हें कुछ जरूरत हो इस पैसे की।
2: यही रुपया चाहिए उसे। अरे बैंक में तो बहुत कुछ जमा है वकील साहब।
4: हाँ हाँ हाँ हाँ, मुझे दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, आखिर अपनी बात रख लिया आपने।
2: सो तो ठीक है, पर हाँ, मेरे पास पैसा है ही नहीं, ये बात नहीं। जब घर से निकला तो जेब में केवल 1116 रुपए थे और मैं वैसे ही चला आया।
4: अरे साहब, आपको किस बात की फिक्र है? दामाद जी के रहते हुए आपको कोई डर नहीं।
2: देखिए शंकर आ भी गया।
1: आ गए? क्यों जी, इतनी जल्दी कैसे आ गए?
0: बस आ गया हूँ।
2: शंकर
0: जी,
2: ये कौन साहब
0: है? ये नागराज हैं, मेरे अजीज दोस्त। नागराज जी, ये मेरे ससुर जी हैं।
4: नमस्ते जी।
2: नमस्ते, नमस्ते।
0: आप बैठिए, मैं अभी आया। सरू, जरा अंदर चलो तो।
2: नागराज जी,
4: जी
2: आप कोई

0: नौकरी कर रहे हैं?
1: अन्ना साहब, कुछ कारोबार है सोने चांदी के गहनों की खरीद फरोख्त का।
0: अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर।
1: जी मुझे भी।
2: सर, दफ्तर गया तो मालूम हुआ कि रुपया घर भेज दिया गया।
3: भेजा था,
2: बीच में नागराज मिला है? पैसे के लिए उसने मुझे जोक की तरह पकड़ लिया। मैं उसे ये कहकर साथ ले आया हूँ कि हिसाब देखकर पाई पाई उसके मुंह पर दे मारूंगा।
3: अच्छा,
2: हाँ, रुपया इधर लाओ।
3: मैं, मेरे पास कहाँ है? पिताजी ने तो ले लिया।
2: क्या सरू, दिस इज टू मच। अब मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। बुलाओ उन्हें, रुपया वापस ले लेना उनसे।
3: रुपया उन्होंने वकील को दे दिया।
2: नॉनसेंस, ये कौन होते हैं मेरा रुपया देने वाले? मैं वकील से भी ले लूंगा।
3: देखिए, पूछूंगा उनसे। जरा ठहरिए तो।
2: नहीं, अब मैं नहीं ठहरूंगा। आज मैं इसका निपटारा करके ही दम लूंगा।
0: क्यों शंकर, क्या बात है?
2: जी बात कुछ नहीं,
0: वकील साहब जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं।
4: जी शंकर जी, मुझे इजाजत दीजिए।
2: वकील साहब, आप यहीं ठहर जाते?
4: क्षमा कीजिए, यहाँ मेरे एक और रिश्तेदार हैं। अगर मैं उनके यहाँ ना जाऊँ तो वो बुरा मानेंगे।
2: बात ये नहीं वकील साहब, वो ठहरिए ना, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता था।
4: शुक्रिया, आपने इतना सब कुछ दे दिया है, यही बहुत है। फिर कभी मैं आपके यहाँ आऊंगा और आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। अच्छा शंकर जी, अच्छा बहन जी, अच्छा नागराज जी।
0: शंकर
2: जी,
0: आपने ये क्या रूप बना रखा है, और ये तुम्हारी आंखें?
2: नॉनसेंस, बस कीजिए ससुर जी अपना व्याख्यान।
3: आप चुप भी रहिएगा, पहले नागराज जी से बात करके उन्हें भेज दीजिए ना।
1: जी बहन जी, मेरा क्या है, इधर मेरा काम खत्म, उधर मेरा प्रस्थान।
2: नागराज जी, मैं कल ही आपके यहाँ आना चाहता था।
1: जी,
2: अच्छा हुआ आज आप ही मिल गए। कल मैं स्वयं आपके यहाँ आकर वो चीज ले लूंगा, सभी बातें तय कर लेंगे।
1: शंकर जी, बात छिपाने की मेरी आदत नहीं है, अगर मैं सीधे ढंग से।
2: नागराज जी, ये सब बातें पीछे होंगी, अभी मेरे ससुर जी भी यही हैं।
1: इसीलिए तो मैं हिचकिचा रहा था। पर
2: ठहरिए जरा, सरू ससुर जी को अंदर ले जाकर खाना परोसते क्यों नहीं?
3: ठीक है, चलिए पिताजी।
0: बेटी सुनो तो, तुम्हारे गले का वो जड़ाऊ हार क्या हो गया?
2: ससुर जी, वो मेरे पास है।
0: शंकर, कहाँ है जरा दिखाओ तो।
1: मेरी जेब में है जी।
0: क्या,
1: सचमुच मेरे ही जेब में है?
2: ये क्या करा नागराज?
1: 1000 रुपए के लिए शंकर जी ने उसे मेरे यहाँ गिरवी रखा है, पर मैं तो देने के लिए तैयार हूँ।
2: नागराज जी,
1: पर ये रुपया दे तब ना, मैं बेचना चाहता था इसे, पर इसके लिए भी ये राजी नहीं हुए।
2: शंकर,
0: जा क्यों रहे हो? शंकर,
3: शायद भूख लग रही होगी पिताजी, खाना परोस कर अभी आई।
0: नागराज जी,
1: जी
0: सर, ये तो बताइए, शंकर कहीं बुरी आदतों का शिकार तो नहीं हुआ?
1: जी मुझे क्या पता।
0: तो फिर उसे तुम्हारे यहाँ कर्ज लेने की ये नौबत कैसे आई, जबकि वो हर महीने 1000 रुपए कमाता है?
1: ओ, ये बात है, उनको एक ही बुरी आदत है, और वो है 375 रुपए की तनख्वाह पाते हुए उसका 10 गुना बड़ा चाहकर कहते फिरना, झूठे ठाट बाट का दिखावा करते हुए और उसे निभाने के लिए इधर उधर की झूठी बातें बनाना।
0: क्या शंकर, शंकर
2: जी, जी जी जी, कहिए।
0: तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 375 रुपए है?
2: जी हाँ, DNS अलाउंस, हाउस अलाउंस, साइकिल अलाउंस, सब मिलाकर।
0: अच्छा, तो जितनी बातें तुमने बताई थी सब झूठी थी?
2: जी।
0: हाय रे भगवान, मेरे दामाद जितने झूठे हैं उतने होशियार हैं। सरू सरू, ये सब क्या है बेटी?
3: पिताजी, पहले उन्हें भेज दीजिए, फिर पीछे बातें होंगी।
0: मैं थोड़ी उन्हें रोकता हूँ, भेज दो ना।
1: जब आप रुपया नहीं दे रहे हैं तो मैं जाऊंगी कैसे?
0: शंकर, उनकी बात का जवाब दो।
2: आप ही दे दीजिए जवाब, 500 रुपए तो आपने हथियार लिया मुझसे पूछे बगैर ही।
0: मैंने समझा था वो मेरे लिए त्योहार का उपहार है।
3: नागराज जी, वह हीरो का हार इधर मुझे दीजिए, रुपया मेरे पिताजी आपको दे देंगे।
1: क्यों नहीं, वे तो बड़े लखपति हैं।
0: लखपति? आपसे किसने बताया कि मैं लखपति हूँ?
3: पिताजी ये सब रहने दीजिए, पहले उन्हें रुपया दीजिए ना।
0: ठीक है, कितना रुपया है?
1: ब्याज सहित कुल 1116 रुपए।
0: बाप रे, मेरे पास तो।
3: दे दीजिए ना पिताजी।
0: ठीक है बेटी, ये लो।
1: शुक्रिया शुक्रिया, अब इजाजत दीजिए, नमस्ते।
0: शंकर
2: जी,
0: ये सब क्या बेला है?
2: जी
0: शंकर, ठहरो जरा, कहाँ भाग जा रहे हो?
2: जी आपकी बातें सुनने और आपको देखने मुझे डर लग रहा है।
0: डर काहे का, डर? ऐसी झूठी प्रतिष्ठा का दिखावा करने के लिए तुमसे किसने कहा?
2: दुनिया ने।

0: दुनिया कैसी दुनिया? आखिर तुम अपने ससुर को भी धोखा देने के लिए तुले हुए हो, जा कहां रहे हो?
1: सरू में चला।
2: पिताजी क्यों नाराज होते हैं उन पर?
0: नहीं तो लोगों के सामने ये झूठ मूठ की बातें कैसी?
2: उन्होंने झूठी बातें अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी कही है। आपको उन्होंने लखपति बताया है, इससे आप समझ सकते हैं उनका मन कैसा है।
0: वो भी तो ठीक है, पर मैं कहां का लखपति हूं? पर बेटी मैंने देखा जैसे मैंने यहां कदम रखा शंकर का रुख बदल गया। अब मैं चला जाऊंगा, शंकर से पूछकर रेल खर्च के लिए पैसे मांग लेना।
1: क्यों सरू, क्या कह रहे हैं पिताजी?
2: गांव चले जाएंगे, किराए के लिए पैसे मांग रहे हैं।
1: ये क्या सरू, त्योहार तो कल ही है, कैसे जाएंगे? ठहर जाने के लिए कह देना और मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना, ठहरने के लिए कहो ना।
2: आप भी बड़े अजीब हैं, आने वालों को आने को मना करते हैं, जाने वालों को ठहरने को कहते हैं। जाने दीजिए ना।
1: नहीं।
2: क्यों नहीं?
1: सच बात कह दूं सरू, मेरे पास उनके रेल खर्च के लिए पैसा भी नहीं है।
2: तो आप खुद जाकर ये बात उनसे कह दीजिए ना।
1: बाप रे बाप, मुझे उन्हें देखते डर लगने लगता है।
2: हमेशा इसका डर उसका डर। सुनिए, आइंदा हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, वास्तविकता का सामना करना ही पड़ेगा।
1: ठीक है, जाता हूँ जाता हूँ।
3: जीवन भय हवा महल के अंतर्गत अभी आपने श्री अनिसेट सुब्बाराव की मूल नाटिका का श्री एम सूरी द्वारा किया हुआ हिंदी रूपांतर सुना। कलाकार दिनेश कुमार, भारती व्यास, जगतपाल सिंह, सीएम नागर और मिश्रीलाल। ध्वनि संयोजक मनोहर सावे और प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेकर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं पालूमि की आवाज में हेलीकॉप्टर इला फिल्म के गाने के साथ। स्वानंद किरकिरे के हैं बोल और तर्ज बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य।

0: भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुने कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा की आवाजों में रंजना फिल्म का गाना। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

साथ भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए आप सुनिए मीका सिंह की आवाज में शुभ मंगल ज्यादा सावधान। इस फिल्म का गाना वायु ने लिखा इसे और संगीतकार है तनिष्क वायु।

0: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
5: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया। एक

0: निदेशक और एक प्राध्यापक। तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए राजा हसन देवले की, प्रवेश मलिक और मुरारी ठाकुर की आवाजों में जबड़िया जोड़ी फिल्म का ये गाना। गीतकार है शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची, संगीतकार है तनिष्क बागची।
3: तोहरी लचके जब कमरिया सारा जिला हिल।

0: पास से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान। कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
2: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेलुलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अनमोल मलिक की आवाज में बजाते रहो फिल्म से कुमार के हैं बोल और जयदेव कुमार की तर्ज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए

0: अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
1: 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बनने के बाद अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
0: बिहार निवासी सानू

0: और परेशानी मुक्त बना दिया है।
1: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बनने की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
0: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
2: एनपीसीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है, इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
3: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।

0: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीष शर्मा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
2: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 पैसे पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में झुमरू फिल्म के गाने के साथ। मजरू सुल्तानपुरी है गीतकार और संगीतकार है किशोर कुमार।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आरती फिल्म का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं रोशन।

अगला गाना हमने लिया है रागिनी फिल्म से, इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, लिखा है कमर जलालाबादी ने और संगीत से सवारा है ओपी नैयर ने।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं SH बिहारी का लिखा और ओपिनियर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम किस्मत।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में, गुलजार की बोल और आर डी बर्मन की तर्ज, फिल्म का नाम परिचय।

0: लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिजू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, वो ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामी ने विजेता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक गायिकाएं अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्य हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजय।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया

मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की

विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगे।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वायर।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

0: विजेता जी के जीवन की दो सबसे दुखद घटनाएं हैं, बहन संध्या की दुखदायी मृत्यु और उसके बाद बेहद कामयाब और प्रतिभाशाली संगीतकार जीवन साथी आदेश श्रीवास्तव का असामयिक बिछोह। पति आदेश श्रीवास्तव का जाना तो जैसे दुखों के पहाड़ का टूटना हो गया। आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति, वात्सल्य से भरे पिता, एक उदार हंसमुख और मददगार इंसान थे। आज उनकी सुरीली स्मृतियां ही विजेता जी के जीवन का सहारा हैं, संबल हैं।
1: बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया जानती है कि उनका नेचर इतना अच्छा था, इतने हंसमुख थे कि आज सब मुझे कहते हैं कि आदेश चला गया, हमारी हंसी चली गई।
0: विजेता जी का बड़ा बेटा अपने महान संगीतकार पिता की तरह ही संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और इस दिशा में बेटे के लिए अभिनेत्री और गायिका माँ विजेता पंडित से बेहतर गुरु कौन होगा।

आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुत

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। वक्त के पुल से आरजुओं का कारमा बढ़ता रहा, दिल ने खुद से फरियाद की, पूरी हुई ख्वाहिश मिल गया एक अजीज साथी, जिसने चांद के अधूरे सफर को पूरा कर दिया, जिसने सितारों से दामन भर दिया।

था जो उसका साथ तो जमीन चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। फूलों में इत्र की सी तेज खुशबू घुल मिल गई। दिल की राहें उस ओर मुड़ गईं जहां से उसकी राहें शुरू होती हैं। पीपल के पेड़ के पीछे रुखसत होता चांद बेहद खूबसूरत लगने लगा। हसरतों का जहां आबाद हो गया।

ये हुस्न का जादू, उफ ये चांद जैसी सुनहरी आंखें, आंखें हैं या है कयामत, ये खूबसूरत गजल है या है उसकी आवाज का तिलिस्म, ये उसकी गुफ्तगू है या कोई सुरीला राग है, ये उसकी आमद है या आसमान में बिजली कड़की है और रोशनी फैल गई है, या फिर ये चौदहवीं की रात है या उसकी हुस्न का जादू।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। जिंदगी की राहों में दिल ने पग पग पर ठोकर खाई, अंधेरे घने बादलों से चमकी एक रोशनी की लकीर, ख्वाबों का जहां जगमगा गया, हवाओं में खनक सी आ गई, ओस की बूंदें मोती सरीखी चमकने लगी, जिंदगी किसी और की अमानत हो गई।

0: मोहब्बत की बांसुरी बजी तो दिल को खबर ही नहीं रही। जिंदगी के झंझावात से दूर दिल आसमान में पतंग बन के उड़ चला। मौसम बदल गया, हर मौसम बहार बन गया। रूठने मनाने की रुत आ गई, पतझड़ में पत्तों के गिरने की आहट में संगीत के सुर घुल गए। सूखे पीले पत्ते हरे भरे हो गए।
1: मुझसे मत पूछो

ख्यालों के आंगन में एक रोज उसने सपनों के दीप जला दिए। उसने दिखाई नई दुनिया। उस दुनिया में हवाएं गीत गा रही थी, बारिश की बूंदें पत्तियों पर मोती सी ठहरी थी। उस दुनिया में न था नफरत का रंग, न थी कोई तलखी, हवाओं में भी मोहब्बत की तासीर थी। दिल तब से उनके पहलू में जा बैठा है।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मल क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामने और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माय वेव्स ओटीटी पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों

0: देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से 11:05 हो चुके ने। हुण साडी अज दी इह सभा खत्म हुंदी है। सवेरे 5:55 ते फिर हाजिर होवांगे। तद तक दे लई इजाजत दिओ। जय हिंद।